नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले

विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक ने स्काई व्हाट्सएप इन लाइफ मान मोड़ काम इतनो आराम सो स्टार्ट अप योर डे विथ रेनबो फन डे।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार मुंबई, मैं हूं आपकी अपनी आर शिमाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी। न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7। वैसे मुंबई जहां हर कदम दौड़ता है, लेकिन इस भागती जिंदगी में एक कोना ऐसा भी जहां समय ठहर जाता है, बाण गंगा, पानी का वो पवित्र कुंड जहां लहरें नहीं शांति बोलती है। तो आज मस्त मुंबई आज चल के तुझे हम लेके चलेंगे बाण गंगा में, और साथ ही साथ आपको सिर्फ वहां की आध्यात्मिक यात्रा नहीं कराएंगे, वहां की एक ऐसी यात्रा जिसे आप भूल नहीं पाएंगे हमारे साथ एफएम रेनबो पर।

जी हाँ, हम सभी जानना चाहते हैं कि भाई गंगा का उद्गम स्थल आखिर मुंबई में कैसे हो गया। आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई आ चल के तुझे लेके चल रही है आपकी दोस्त माला बाण गंगा की ओर। बचपन में दादी नानी की कहानियों में एक जगह जरूर होती थी जहाँ देवता आते थे, भगवान आते थे, जहाँ पानी कभी सूखता नहीं था। और आज वही कहानी जो है हमें ले आई है बाण गंगा की सीढ़ियों तक। पत्थरों पर बैठकर पानी को निहारते हुए ऐसा लगता है कि जैसे बचपन फिर से लौट आया हो। और ये बचपन हमेशा हमारे अंदर जीवित रहना चाहिए, तभी हम जो है जीवन जो है पूरे तरीके से जी सकते हैं। आप बहुत सारे लिसनर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो सबसे पहला मैसेज हमारे पास आया है बाबा का दादर से, रजनीकांत पाटिल वाडवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश शिंदे ने लिखा है कि मुंबई के मालाबार हिल में स्थित बाण गंगा जलकुंड अपनी शांति और पौराणिक महत्ता के लिए जाना जाता है। शहर के शोर में एक सुकून का किनारा है ये बाण गंगा का जल, जैसे भक्ति का सहारा है। सीढ़ियों पर बैठकर जो मिलती है यहाँ शांति, लगता है भगवान ने इस मंजर को सवारा है। राम के बाण से निकली वो पावन धारा है, इस कुंड के कणकण में भक्ति का नजारा है। इतिहास की खुशबू यहाँ की हवाओं में बसती है। बाण गंगा का हर पत्थर मर्यादा पुरुषोत्तम को प्यारा है। बहुत ही खूबसूरत लाइन है प्रकाश जी, आपने हमें लिख भेजी है। दीपा पालकर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और गंगा को भी हम माँ ही कंसिडर करते हैं, गंगा मैया कहते हैं। दीपा पालकर कह रही हैं कि आज मदर्स डे है और सभी मदर्स को वो हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हैं। कोई भी शब्द जो है इस फीलिंग को, जो माँ की फीलिंग होती है, उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। बहुत ही गहरी थॉट है ये जिस जो हमारे पास भेजा है दीपा पालकर ने। पंकज महोट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और विजेंद्र घटोल अकोला से, प्रमोद चिंचोलकर भी हमें सुन रहे हैं अकोला से ही, अंजू अंधेरी से हैप्पी मदर्स डे कह रही हैं, राम प्रजापति भी हमें सुन रहे हैं, संतोष गावंड वर्ली कोलीवाड़ा से जुड़ गए हैं जो कि सी लिंक के पास में रहते हैं, श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में आर्य और मिलेश राउत टिगरेपाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश पाटिल भी टिगरेपाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई और मस्त मुंबई आज चल के तुझे, आज हम ले जा रहे हैं बाण गंगा की ओर। और हम चाहते हैं कि अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हमें मैसेज कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। अगर आप कभी बाण गंगा गए हैं तो जरूर बताइए 8657661071 पर, 8657661071 पर।

और आप सभी को मेरा प्रणाम। आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM कार्यक्रम मस्त मुंबई आशल के तुझे लेके चलूं। कार्यक्रम में मैं आपको ले जा रही हूं बाण गंगा की और पुष्पा सावंत भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मदर्स डे की जो है शुभकामनाएं दे रही हैं। भाग्यशार पाटिल गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। दत्तात्रेय आदत वेड़ापुर से जुड़ गए हैं। प्रणीत सोंडावले जो हैं वो भी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्सिंग संडे की तरह एंजॉय कर रहे हैं। विजेंद्र कटोला कोला से कह रहे हैं कि भाई उनके खेत में जो है वो कांदा उग गया है, यानी पूरी तरह से तैयार है और अब वो उसे निकाल रहे हैं। और राकेश माथुर जो है वो कह रहे हैं कि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ कार्यक्रम के साथ और उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, पुणे से ये हमें सुन रहे हैं। प्रमोद चिंचोलकर कह रहे हैं कि भाई आप हमें जगन्नाथपुरी ले जा रहे हैं। नहीं प्रमोद जी, हम आपको आपके अपने मुंबई के बाणगंगा टैंक की तरफ लेके जा रहे हैं आज मस्त मुंबई में। और पंकज महोट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता बल्कि माँ से हर एक दिन नेक हो जाता है। महेश बोहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मदर्स डे की शुभकामनाएं देश दुनिया के सभी मदर्स को दे रहे हैं और खुद भी शश्रत नमन कर रहे हैं। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहिए, अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि अपना प्यार आप तक पहुंचाते रहें अपनी आवाज के जरिए, FM रेनबो के जरिए। तो आज मस्त मुंबई में बात हो रही है बाण गंगा की। तो बाण गंगा का पानी कभी सूखता नहीं है। मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया था और तभी से ये जलधारा निरंतर बह रही है। शायद इसलिए यहाँ आकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। क्या आप जानते हैं एक छोटा सा परिवार हर रविवार को यहाँ आता है, जैसे आज इस रविवार आपकी दोस्त माला आपको ले आई है बाण गंगा के द्वार। तो जो परिवार यहाँ आता है वहाँ उसमें पापा माँ और उनका छोटा सा बेटा आते हैं साथ में और माँ दीप जलाती हैं, पापा चुपचाप पानी को निहारते हैं और बेटा सीढ़ियों पर बैठकर कबूतरों से दोस्ती करता है। उनके लिए ये सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि ये एक रिश्ता है शांति से, अपनेपन से। और ये रिश्ता आप भी बना सकते हैं। बाणगंगा टैंक आप जा सकते हैं जब आपको टाइम मिले, पीस के शांति के दो लम्हे आप वहां गुजार सकते हैं और उसके बाद आकर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपने वो एक्सपीरियंसेस कि क्या आपने भी गंगा के पानी को अमृत जैसा महसूस किया था क्या।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होय. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी. न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें सुनते ही हैं 24/7 और श्रीधर मुजारकर भी हमें सुन रहे हैं और मातृ दिन की शुभेच्छा भी इन्होंने हम तक पहुँचाई है. गुलाब गायकवाड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं और सभी चाहते हैं मन से माँ को प्रणाम करना. सभी के मैसेजेस मदर्स डे पर हमारे पास. चेतन कुमार मानपुर बाजार गया बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं. प्रणव शिंदे भी जो गाने हैं और कार्यक्रम की जानकारी है उन्हें पसंद आ रही है और शुक्रिया उन्होंने बोला है, तो आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रणव. और पंकज महोड भी सुन रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बाण गंगा का पानी कभी नहीं सूखता. जी हाँ, वही हमने आपको बताया था. दीपा पालकर कह रही है कि बाण गंगा को जब हम जाते थे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, 3-4 बार हम गए हैं वहाँ बालकेश्वर दक्षिण मुंबई में. फ्रेश वाटर है, 900 साल पुराना तालाब माना जाता है, इसे मिनी बनारस भी कहते हैं और इसके आसपास बहुत सारे मंदिर भी हैं. और बाण गंगा में पानी जो है वो लगातार बहता रहता है, ताज़ा पानी है. गंगा नदी से निकलते हुए गोदावरी नदी महाराष्ट्र में आती है. इसी नदी का बहता हुआ पानी हम बाण गंगा में पी सकते हैं, इसे हमने भी चखा है. ये दीपा पालकर ने जानकारी शेयर की है. और ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है मनीष का कांदिवली से और मनीष भी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं. श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत भी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं. प्रमोद चिंचोलकर, फिरोज सिगेनपुरिया भी सुन रहे हैं. मदर्स डे की शुभकामनाएं भी इन्होंने पहुंचाई हैं. और रघुनाथ खनुकर कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं. कार्यक्रम कह रहे हैं छान कार्यक्रम, थैंक यू सो मच. और ये प्रकाश शिंदे भी हमारे साथ जुड़े हैं. मदर्स डे का मैसेज आपने हम तक पहुंचा है प्रकाश जी. अगले घंटे में 10 बजे हम आपके साथ ये मैसेज जरूर शेयर करेंगे, आपकी पसंद के गाने भी. फिलहाल बात चल रही है मस्त मुंबई आ चल के तुझे लेके चलू मैं बाण गंगा की. क्या आपने कभी मुंबई में एक ऐसी जगह देखी है जहाँ समय ठहर जाता है? बाण गंगा वही एहसास है जहाँ ना ट्रैफिक की आवाज है ना भाग दौड़ है, बस आप और आपकी सोच. और दोस्तों, यहाँ हर साल होता है बाण गंगा फेस्टिवल जहाँ संगीत गूंजता है, संस्कृति महकती है और साधना का संगम होता है. ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि मुंबई की आत्मा का उत्सव है. आप भी शामिल हो सकते हैं इस उत्सव में अगर आप शामिल होना चाहें तो. फिलहाल बने रहिए बाण गंगा के सफर पर आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर. बनारस से सीधे मुंबई के बालकेश्वर टेम्पल के पास बाण गंगा टेम्पल, मस्त मुंबई आ चल के तुझे लेके चल रही है आपकी दोस्त माला.

तो ऐसी है अपनी गंगा मैया। और ये मैसेज जो है, एक हमारे पास प्यारा सा मैसेज आया है अदिति शिंदे की तरफ से। वो कह रही है कि वो 12 साल की हैं और वो नाला सुपारा से बात कर रही हैं हमसे। पिछले हफ्ते वो वाराणसी की यात्रा पर अपने मम्मी पापा के साथ गई थी और वो कह रही हैं कि वो गंगा नदी के पास ही ठहरे हुए थे और मेरी मम्मी और मुझे गंगा नदी में पैर गीला करना था, गीला करने जा रहे थे। तो एक प्लेटफॉर्म पर इतना आगे था कि उसका कलर नॉर्मल जो ईंटें होती हैं उसके जैसे ही लग रहा था। पैर रखा तो मेरी मम्मी का पैर ही फिसल गया, मैं भी फिसल कर गिर गई और हम अंदर नहीं गिरे, पर गंगा मैया ने हमें कुछ चोट नहीं पहुंचाई। तो हमारा शेड्यूल से पहले गंगा स्नान पहले ही हो गया, जो जैसे लिखा था वैसे ही होना था। मेरे मम्मी को ये प्रोग्राम सुनने में बहुत पसंद आ रहा है और कुछ ना कुछ जानने को भी मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई आप गान गंगा भी जाइए, अदिति अदिति ही है, अदित्रि नाम लिखा, अदित्रि शिंदे। तो आपकी जो यात्रा है बहुत ही खूबसूरत रही होगी डेफिनेटली। अदिति बाणगंगा भी जाइए और आज मस्त मुंबई आंचल के तुझे लेके चले हम आपको ले जा रहे हैं वालकेश्वर, मुंबई के बसे हुए बाणगंगा टैंक की ओर। तो दोस्तों आज की ये बाणगंगा यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, जब भी दिल थक जाए तो आकर यहाँ बैठ जाइए, शायद आपको खुद से मिलने का मौका मिले और शायद आप एक बार अपनी दोस्त माला को भी याद करें। चलते चलते बस इतना ही कि कभी खुद के साथ थोड़ा वक्त जरूर बिताना चाहिए और अगर वो वक्त आप बाणगंगा टैंक के पास बिताएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। प्रमोद चिंचोलकर, गुलाब गायकवाड़, प्रकाश शिंदे और पंकज महोड़ भी जुड़े हुए हैं, लगातार हमें मैसेजेस कर रहे हैं, इसलिए हम आपके मैसेजेस शामिल कर रहे हैं। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग और 10 समाचारों के बाद एक बार फिर आपके साथ आपकी दोस्त माला जुड़ जाएगी लेकर कार्यक्रम नमस्ते भारत। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है और आज है मदर्स डे। तो चलते चलते ये गाना सभी माओं को और गंगा मैया को समर्पित करते हुए चलते हैं इस घंटे का आखिरी गाना।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है विनायक नारायण देशपांडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रतापगंज दिल्ली से सुब्बा लक्ष्मी और जबलपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मनोहर लाल खूबचंदानी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, जब भारत भूमि एक मौन ज्वालामुखी की तरह थी, ऊपर से चुप लेकिन भीतर धधकती हुई, एक सुलगता हुआ समय कि जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने एक अत्यंत संवेदनशील और उग्र मोड़ ले लिया था। इस कालखंड में दो स्पष्ट धाराएं उभर रही थीं। एक का रवैया नर्म था, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सुधारात्मक मार्ग था ये, और दूसरा रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। इसके अग्रदूत थे चाफेकर बंधु और उनके अत्यंत निष्ठावान सहयोगी महादेव विनायक रानाडे, जो एक क्रांतिकारी छात्र थे तथा मात्र 20 वर्ष की आयु में भारत भूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वतन का राग कार्यक्रम में आज एक आत्मीय स्मरण इन्हें महादेव विनायक रानाडे का। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद पुणे का ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर चित्पावन ब्राह्मण समुदाय, अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका था, लेकिन उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना अब भी अत्यंत तेज थी। 1870 के दशक में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने महाराष्ट्र के युवाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। 1890 के दशक में पुणे वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। एक ओर सुधारवादी गुट सक्रिय था तो दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे थे। ये विचारधारा स्वधर्म और स्वराज की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष को आवश्यक मानती थी। महादेव विनायक रानाडे इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के गर्भ से निकले एक महान योद्धा थे। उनका जन्म सन 1878-79 के आसपास एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक रानाडे एक साधारण किंतु संस्कारवान व्यक्ति थे। महादेव विनायक रानाडे अपनी शिक्षा के दौरान ही पुणे के उस क्रांतिकारी प्रभाव में आ गए थे जो पुणे की तत्कालीन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पनप रहा था। युवा महादेव विनायक रानाडे की आंखों में अपने जीवन को लेकर कोमल स्वप्न नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में भारत की आजादी का संकल्प था। यही कारण है कि शिक्षा के साथ साथ उनका

महादेव विनायक रानाडे के क्रांतिकारी जीवन की औपचारिक शुरुआत हिंदू धर्म संरक्षण सभा के माध्यम से हुई थी। इस संगठन की स्थापना सन 1893-94 में चाफेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू परंपराओं, संस्कृति और मंदिरों की

रक्षा करना था। यह संगठन सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता था, लेकिन गुप्त रूप से इसमें युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संगठन की सदस्यता अत्यंत कठोर नियमों के तहत प्राप्त की जाती थी। गीता और तलवार पर हाथ रखकर क्रांतिकारी शपथ लेते थे। ये शपथ केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का व्रत था जिसका पालन वो हर हाल में करते थे। इस संगठन के प्रारंभिक और सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे महादेव विनायक रानाडे। वो न केवल शारीरिक प्रशिक्षण में अग्रणी थे, बल्कि चाफेकर बंधुओं के बीच एक सेतु की भांति कार्य किया करते थे। ये मिलकर जैसे एक ही लक्ष्य के चार स्तंभ थे। इनकी गतिविधियां केवल शस्त्र तक सीमित नहीं थीं, ये जन जागरण का कार्य भी करते थे। संस्था शिवाजी महाराज और गणपति उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी। इसके साथ ही धर्मांतरण का भी विरोध करती थी। ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हुए उनका विरोध करती थी। महादेव विनायक रानाडे का युवा मन केवल आक्रोश से नहीं भरा था, बल्कि वो प्रतिशोध की ज्वाला भी बन चुका था। उनके जीवन का लक्ष्य था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इसी बीच एक महामारी ने ब्रिटिश राज का अत्यंत क्रूर चेहरा जनता के सामने रख दिया। सन 1896 में पुणे में प्लेग फैला। धीरे धीरे इसने एक महामारी का रूप ले लिया। फरवरी 1897 में ब्रिटिश सरकार ने विशेष प्लेग समिति का गठन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी W.C. रेंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रेंड का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था। उसका रवैया अत्यंत संवेदनहीन रहा। रेंड ने प्लेग नियंत्रण के लिए डॉक्टर्स के स्थान पर 800 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को पुणे की गलियों में उतार दिया। इन सैनिकों ने प्लेग की जांच के नाम पर जो कार्रवाई की वो अत्यंत घृणित थी। ये सैनिक आधी रात को लोगों के घर में घुस जाते और घर के सामान को नष्ट कर देते। ये सैनिक पूजा घरों में भी घुस जाते, पूजा स्थान को अपवित्र करते, धार्मिक प्रतीकों का तिरस्कार करते, मूर्तियों को तोड़ते और उन्हें अपमानित करने का कृत्य करते। प्लेग जांच के नाम पर सैनिक महिलाओं को निर्वस्त्र करवाते और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाता। लोगों को शिविरों में भेज दिया जाता और अत्यंत अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इन घटनाओं ने महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी।

प्लेग नियंत्रण के बहाने रैंड के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी बुलंद स्वर में आलोचना की। महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं ने रैंड को अत्याचारी और धर्म का शत्रु घोषित कर दिया तथा उसे समाप्त करने की योजना बनाई। 22 जून सन 1897 को रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर पुणे के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें रैंड को भी शामिल होना था। क्रांतिकारियों ने रैंड की हत्या के लिए इसी दिन को चुना। क्रांतिकारियों ने सारी आवश्यक जानकारियां जुटाईं। वासुदेव हरि चाफेकर ने रैंड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। महादेव विनायक रानाडे ने प्रमुख सहायक, क्रियान्वयनकर्ता और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। 22 जून को सभी क्रांतिकारी नियत समय और स्थान पर अपने अपने दायित्वों के साथ तैनात हो गए। जैसे ही रैंड की बग्घी निकली, दामोदर चाफेकर ने संकेत दिया। वो बग्घी के पीछे दौड़ने लगे और बग्घी के पर्दे हटाकर रैंड के सिर पर गोली मार दी। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में 3 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। रैंड की बग्घी के ठीक पीछे उसके सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आरिस्ट की बग्घी भी थी। बालकृष्ण चाफेकर ने उस पर गोली चलाई और वो घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। महादेव विनायक रानाडे हथियार बंद होकर निगरानी करते हुए वहां मौजूद थे। उन्होंने रैंड और आयर्स्ट की हत्या में सक्रिय सहयोग दिया। अंधेरे और उत्सव के शोर का लाभ उठाते हुए क्रांतिकारी वहां से सुरक्षित निकल गए। इसे 1857 के बाद भारतीय उग्र राष्ट्रवाद की पहली बड़ी घटना के रूप में देखा गया। ये घटना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक जबरदस्त झटका थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया तथा पुणे में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू की, लेकिन क्रांतिकारी अब तक पकड़े नहीं गए थे। इसी बीच द्रविड़ बंधु गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र शंकर द्रविड़, जो पहले से ही चाफेकर बंधुओं के साथ थे, उन्होंने 20,000 रुपए के लालच में पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी आधार पर दामोदर हरि चाफेकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म के अपमान और मूर्तियों को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए उन्होंने रैंड की हत्या की। 18 अप्रैल सन 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। बालकृष्ण हरि चाफेकर कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन अंततः 1899 में वो भी पकड़े गए। द्रविड़ बंधुओं के

विश्वासघात ने महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर को क्रोध से भर दिया। 9 फरवरी सन 1899 को महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर ने खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों को समाप्त कर दिया। उसी रात उन्होंने पुलिस के एक प्रमुख मुखबिर और एजेंट रामा पांडू को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। महादेव विनायक रानाडे ने मुकदमे के दौरान जो साहस दिखाया वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अपनी याचिका में खुलासा किया कि पुलिस ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए। पुलिस चाहती थी कि वो स्वीकार करें कि रैंड की हत्या के पीछे तिलक जी का हाथ है, लेकिन अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने तिलक जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का नाम नहीं लिया। मुकदमे का फैसला आया। किशोर क्रांतिकारी खांडो विष्णु साठे को 10 कारावास की सजा दी गई और शेष तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 मई सन 1899 को वासुदेव हरि चाफेकर को, 10 मई को महादेव विनायक रानाडे को और 12 मई को बालकृष्ण हरि चाफेकर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। वक्त हो चला है 10:03। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। तमिलनाडु में तमिलग वेतरी कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय कुछ ही देर में चेन्नई के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ 3 मामलों में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमेरिकी सेना के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद ये बयान आया है। आईपीएल क्रिकेट में कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत। लेकर आ गई है आपकी दोस्त माला एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। और आज हम खोल रहे हैं दिल की खिड़कियां, कुछ बातें जो कभी कहीं नहीं गई, आज उन्हें हम देंगे आवाज, मेरा दिल मेरी बातें में। और आज मदर्स डे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी पसंद की फरमाइश और माँ के नाम कोई संदेश अगर आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 8657661071 8657661071 इस नंबर पर पहुँचाइए मैसेज अपनी दोस्त माला तक और हम पहुँचाएंगे एफएम रेनबो के माध्यम से आप तक। इससे पहले कि मेरा दिल मेरी बातें और दिल की खिड़कियां खोलें, कुछ बातें करें जो कभी कहीं नहीं गई, उससे पहले आपको सुना दें ये खूबसूरत सा नगमा उदित नारायण की आवाज़ में, सभी माओं को समर्पित है।

तो भाई ये जो गाना है ये बिल्कुल अल्टीमेट गाना है मदर्स डे पर, और इसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई थी प्रणव शिंदे ने, और साथ में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी भेजी है, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। शहर में रहने वाले राहुल ने मदर्स डे पर अपनी माँ को सरप्राइज देने का सोचा। उसने उनके लिए एक महंगी रेशमी साड़ी और सोने की अंगूठी भी खरीदी। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि माँ पुराने धुंधले हो चुके चश्मे से सुई में धागा पिरोने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने बड़े गर्व से अपने तोहफे माँ के सामने रखे। माँ ने साड़ी और अंगूठी देखी और मुस्कुराई और बड़े प्यार से राहुल का माथा भी चूम लिया। लेकिन राहुल ने गौर किया कि माँ की आंखों में वो चमक नहीं थी जो वो देखना चाहता था। तभी राहुल की नजर माँ के उस पुराने चश्मे पर पड़ी जिसकी डंडी पर टेप लगा हुआ था। उसे अचानक याद आया कि माँ पिछले एक साल से कह रही हैं कि उन्हें साफ नहीं दिखाई देता, पर वो अपनी ऑफिस की व्यस्तता में हमेशा भूल जाता था। राहुल तुरंत माँ का हाथ पकड़कर उन्हें पास के आई क्लिनिक ले गया। वहां उसने माँ की आंखें चेक कराई और उनके लिए सबसे बेहतरीन चश्मा बनवाया, और जैसे ही माँ ने वो नया चश्मा पहना उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई। उन्होंने राहुल का चेहरा गौर से देखा और बोली, बेटा आज सालों बाद मुझे मेरा लाल इतना साफ और प्यारा दिख रहा है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि माँ के लिए महंगे तोहफे नहीं बल्कि उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना ही असली मदर्स डे है। उस दिन राहुल ने साड़ी से ज्यादा खुशी उस नए चश्मे की वजह से माँ के चेहरे पर देखी थी। माँ को हमारी महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस हमारे समय और उस फिक्र की जरूरत होती है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। प्रणव शिंदे ने ये कहानी हम तक पहुंचाई है, और प्रणव हमने आपकी ये कहानी सब तक पहुंचा दी है मदर्स डे पर। और भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, हम कोशिश करते हैं कि सभी के मैसेजेस शामिल करेंगे। पंकज मोहड़ ने अमरावती से कहा है कि 29 साल पहले मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई थी, लेकिन माँ हमेशा मेरे साथ हैं।

और जीवन में एक भी ऐसा वक्त नहीं आया होगा कि जब माँ की याद ना आई हो। माँ का आशीर्वाद अपने बच्चों पर सदा रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाई ये गाना सभी प्यारी प्यारी माओं के लिए।

वाकई में माँ के साथ जो रिश्ता है वो बहुत आला होता है। इतने सारे मैसेजेस हम तक आप लोगों ने पहुंचाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश करते हैं कि सभी पढ़ पाए। चेतन कुमार ने कहा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा माँ को उसके चेहरे पर, न कभी थकावट देखी न ममता में कभी मिलावट देखी। और माँ के लिए क्या लिखें, हम तो खुद उनकी लिखावट हैं। माँ मैं एक कदम चलना सीखा, तू कितनी मुस्कुराई थी, मैंने जब हाथ तेरा पकड़ा ममता से तेरी आंखें भर आई थी। भगवान को किसने देखा है, माँ में उसकी छवि समाई है। सुख में भी रो देती है तू माँ, दुख में अपना हर पल छिपाई है। ये मैसेज चेतन कुमार ने मानपुर गया बिहार से हम तक पहुंचाया है। प्रमोद चिंचोलकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजेंद्र घटोल भी जो है जुड़े हुए हैं, पंकज महोड़ भी, और उन्हें जय विक्रांता फिल्म का ये गाना बहुत पसंद आया। और ये मैसेज अवधेश मौर्या का जौनपुर से, हैप्पी मदर्स डे वो कह रहे हैं। शुभदा तारे जमी पे फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं, तो ज़रूर बजाएंगे शुभदा। और श्री राउत मिलेश गजानन राउत, आर्य मिलेश राउत टिगरेपाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपा पालकर भी सुन रही है कार्यक्रम और उन्होंने भी अपनी फरमाइश पहुंचाई है हम तक। हम कोशिश करेंगे दीपा जी कि आपकी फरमाइश भी हम ज़रूर पूरी करें। और जो अगला मैसेज हमारे पास आया है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, पर उससे पहले सुनाएंगे कैलाश खेर की आवाज़ में दसवें दानिया फिल्म का ये खूबसूरत नगमा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें। और आज आपके दिल की बातें हम पहुंचा रहे हैं आप तक। मदर्स डे है और प्रदीप अनंत कृष्णन ने लिखा है कि माँ का जो छूने का एहसास है वो बहुत हार्ट वार्मिंग कैसे बनता है। एक माँ वो होती है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि ये रिलेशनशिप हमारा अपने पेरेंट्स दोनों के साथ होता है, माँ के साथ भी और पिता के साथ भी। लेकिन जब माँ की बात आती है और अगर हमें कभी चोट लग जाती है तो हम सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हम ढूंढते हैं अपनी माँ का आंचल, और ये फील जो है हमें जीवन भर प्रोटेक्ट करता है, सेफ करता है। और बड़े होते होते ये जो एहसास है और बढ़ता चला जाता है, और जब हमारी आगे उम्र भी बढ़ती है और हम समय के साथ ज़िंदगी को सीखना शुरू करते हैं तो माँ के सेक्रीफाइसेस और वो डिवोशन जो है हमें समझ आने लगते हैं, और हमें उनके प्रति और लव और रिस्पेक्ट आ जाता है, ना सिर्फ माँ इनफैक्ट पिता के प्रति भी। तो कोशिश कीजिए कि अपने बड़ों के साथ, अपनी माँ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और उन्हें बड़ा होते हुए, ओल्ड होते हुए देखिए, ताकि आप उन्हें वो अपनेपन का एहसास कराएं जो उन्होंने आपको तब करवाया था जब आप छोटे थे, जो आज तक आपके साथ है। तो उन्होंने, प्रदीप अनंत कृष्ण ने हमें ये मैसेज भेजा है प्यारा सा, और हैप्पी मदर्स डे लिखा है सभी मदर्स को, हमें भी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपा पालकर ने लिखा है कि भाई, सुशिक्षित हो या अशिक्षित, बच्चों के लिए एक अच्छी मार्गदर्शक होती है माँ, जीवन के महासागर में हमारे लिए दीप स्तंभ बनकर बच्चों को दिशा दिखाती हुई नजर आती है। वाकई में हर माँ यही करती है, हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे आगे बढ़े। 10:33 और ठीक 50 सेकेंड, अगला गाना लता मंगेशकर और ए आर रहमान की आवाज में, रंग दे बसंती फिल्म से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर. कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें. और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे. और मदर्स डे, एक माँ जो अपने अकेले बेटे को पाल रही है, संघर्ष बहुत करती है, लेकिन जब बेटा कहता है माँ तुम मेरी हीरो हो, तो सारी थकान मिट जाती है. वहीं एक पड़ोसन अम्मा भी है जो हर सुबह चाय के साथ माँ जैसा अपनापन भी परोस देती है. उनकी एक मुस्कान पूरे दिन को रोशन कर देती है. तो ऐसी होती है माँ जिसको आज, जिसके लिए आज इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर. अगला गाना उदित नारायण और ज्योत्सना हर्दिकर की आवाज़ में, लाडला फिल्म से. बहुत सारे लोगों ने इसकी फरमाइश की है, सबके नाम हम लेंगे लेकिन इस गाने के बाद.

तो भाई आर्यन सोमवंशी जलगांव से हमें सुन रहे हैं और वहीं ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है विठल मुंगासे का। जगह का नाम इन्होंने नहीं बताया है। फिर उससे गिनपुरिया भी जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं माँ की ममता में ही जीवन का सार है, उसके आशीष से ही हर दिन नौजियार है। दत्तात्रेय आदत वेलापुर से हमें सुन रहे हैं। सभी पर FM रेनबो परिवार के लोगों को मातृ दिवस की शुभकामनाएं। अंजू अंधेरी ईस्ट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बाबा दादर से शुभ लक्ष्मी मस्तकार भी सुन रहे हैं हमें और कह रहे हैं कि माँ जैसा भगवान दुनिया में कोई नहीं। और प्रकाश शिंदे भी जुड़े हुए हैं। शुभदा भी कह रही हैं कि

उन्हें गाने पसंद आ रहे हैं। दीपा पालकर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रमोद चिंचोलकर, पंकज महोड़। ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है मदन गौरव अरोड़ा का, और रजनीकांत पाटिल वाड़वन से, विजेंद्र खटोल अकोला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब एक मैसेज हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं, जिसे भेजा है हमें प्रकाश शिंदे ने। माँ का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन माँ का होता है। उनकी वजह से तो हम आज का ये दिन भी मना पा रहे हैं। वो बेवजह का डांटना और फिर प्यार से मनाना बहुत याद आता है। माँ का वो रूठ जाना, तेरा वो हक जताना, दुनिया की भीड़ में अब कोई टोकने वाला नहीं, थक गया हूँ खुद को सही रास्ते पर लाना। तेरी डांट में छुपा था जो सुकून का मंजर, वो अब नहीं मिलता दुनिया के किसी लफ्ज के अंदर। माँ तेरी आवाज की वो कड़वाहट भी शहद थी, आज बहुत याद आ रहा है वो ममता का समंदर। ऐसा कुछ होता है माँ का प्यार। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। तो भाई अगला गाना आप सभी के लिए, प्यारी प्यारी माओं के लिए।

और वाकई में हम सभी अपनी माओं की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन कुछ लोग दिखा पाते हैं, कुछ नहीं दिखा पाते. और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे. आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर वक्त हो चला है 10:56 और ठीक 35 सेकेंड हो गए हैं. नमस्ते भारत को समाप्त करने का वक्त हो चला है, लेकिन मदर्स डे अभी खत्म नहीं हुआ है. आप आज पूरा दिन अपनी माँ के पास जाकर उनके साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं. वैसे आज ही का दिन क्यों, आपको हर रोज उनके पास जाना चाहिए, और अगर आप दूर रहते हैं तो उनसे फोन पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ तब दिया था जब शायद हमारे साथ कोई भी नहीं था. हैप्पी मदर्स डे टू ऑल. और फिलहाल आपकी दोस्त माला लेगी आपसे इजाजत. थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, और 11 बजे आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111. कहीं जाइएगा नहीं, अपनी दोस्त माला को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि जल्द ही होगी फिर आपसे मुलाकात आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर. तब तक आप बने रहिए FM रेनबो पर. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर. वक्त हो चला है 10:57 और ठीक 43 सेकेंड. आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे. श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे. प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है. देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे. पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया. इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण त्रिनिदाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र त्रिनिदाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत करेगा और कृषि क्षेत्र को नई गति देगा. शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है. रिकर्व टीम ने दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोद शामिल थीं. इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: रहे हैं मन की बात का वो अंश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध दर्शन को एक बार फिर से हम सभी को याद दिलाया है।
1: साथियों, आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपोन ओजेर रिनपोचे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। साथियों, बुद्ध का संदेश सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी जरूरी है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और संतुलन के साथ आगे बढ़ें।
0: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द। और आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने दो विशेषज्ञों को और इनके माध्यम से आज इस विषय के बारे में हम अपनी समझ बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत कर रही हूँ प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम जी का। आप बौद्ध अध्ययन विभाग नव नालंदा महाविहार संस्कृति मंत्रालय नालंदा में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं स्वागत कर रही हूँ सतीश कुमार जी का। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका है और बौद्ध दर्शन की जो शिक्षा है वो आप युवाओं तक पहुँचाते हैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। सतीश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत साधुवाद।
0: बौद्ध दर्शन की जो समसामयिकता है वो क्या है, और ये मैं जानना चाहूंगी प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम आपसे।
3: देखिए, बौद्ध दर्शन स्थान और समय के कारण परिवर्तित नहीं होता, ये समसामयिक है
0: जी।
3: जिसको हम कहते हैं कि स्पेसियो टेम्पोरल गैप के कारण इसमें कोई परिवर्तन आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अब हम बौद्ध दर्शन है क्या, इस पे बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करते ही कहा था, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आता पिनो जायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंखा बपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्मं। मतलब, जब धर्म का सही स्वरूप किसी भी ध्यानी के समक्ष प्रकट होता है
0: जी,
3: तो उसकी सारी शंकाएं खत्म हो जाती है और वो जान जाता है कि सारी चीजें हेतुओं से उत्पन्न है, कारण से उत्पन्न है
0: जी।
3: दूसरी जगह उन्होंने कहा कि द्वे इमे भिक्खवे देशेमि दुखं च दुख निरोधं च। भिक्षुओं, मैं केवल दो ही बात करता हूँ, इस संसार में दुख है और उस दुख का समाधान है। इसके बाद उनके एक प्रमुख शिष्य ने भगवान की बात को अपने सहयोगियों के समक्ष रखा, वो था, ये धम्मा हेतु पहुआ तेसंग हेतु तथागत हुआ
0: जी।
3: तेसंग च यो निरोधो एवं वादी महासमनोति। ये जितने भी इस दुनिया में जो भी कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं, जो निर्मित चीजें हैं, वो सभी हेतुओं पे, कारण पे आधारित है
0: जी।
3: उस कारण को समझ लो, जान लो, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने ऐसा कुछ कहा जिसकी प्रासंगिकता हर युग में, हर काल में और हर स्थान पे उतना ही समीचीन है
0: जी। यानी हर जगह वो दर्शन अभी भी है, वो शिक्षाएं अभी भी हैं जी। तो सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आधुनिक युग है, इसमें कॉर्पोरेट को और कॉर्पोरेट कल्चर को ऐसा देखते हैं कि भागदौड़ भरा एक कल्चर है और बहुत ही प्रतिस्पर्धा है और जिसमें बस किसी भी तरह हम जो हैं बहुत ज्यादा मोनेटाइजेशन के बारे में सोचते रहते हैं। आप क्योंकि ट्रेनिंग

0: देते हैं बौद्ध टीचिंग्स की कॉर्पोरेट्स को, तो मैं जानना चाहूंगी आपका अनुभव कि किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलती है और आपको क्या लगता है ये क्यों जरूरी है।
1: जिंदगी की भागदौड़ और धन कमाने की आपाधापी में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वह मानसिक रूप से विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता जा रहा है, जिसमें मानसिक तनाव का होना बड़ा ही सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन मानसिक तनाव विभिन्न प्रकार की बीमारियों का मूल कारण बन जाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट डिजीजेज रही हो, यहां तक कि स्ट्रोक, और कई बार तो डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम घर परिवार और रोजगार में सामंजस्य स्थापित करने में हम असमर्थ महसूस करने लगते हैं। और केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही नहीं, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी और परिवार को जाने और समझे तो हम पाते हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी हम कई मूल समस्याओं का सामना करते हैं जो विशेष रूप से मानसिक रूप से जुड़ी हुई है। हम लोग इफेक्टिव पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस तरह के विचार, उस तरह के थॉट्स हमारे मन में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आज का जो दौर हो गया है, एक तरफ हमें धन कमाना है, दूसरी तरफ हमें बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना है, तीसरी तरफ परिवार और परिवार के सदस्यों में आपस में संतुलन बनाए रखना है, तो इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब मैं धम्म की तरफ देखता हूं, बुद्ध की तरफ देखता हूं, बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि सबसे पहले मस्तिष्क में विचार ही आते हैं
0: जी।
1: ये जो विचार आते हैं, विचार मनुष्य को प्रेरित करते हैं कोई एक्शन लेने पर, कोई ना कोई तो एक्शन होगा, क्योंकि जो विचार है वो एक बीज के जैसा है, अगर उस बीज को सही पानी मिल जाए, सही मिट्टी मिल जाए, सही मौसम मिल जाए, तो वो एक जो बीज है वो पौधा बन सकता है। लेकिन समस्या ये है, क्या उस बीज को मैं पहचान पाया, क्योंकि अगर वो जहरीला बीज है तो वृक्ष भी जहरीला होगा, और अगर वह अमृत तुल्य बीज है तो अमृत से भरा हुआ होगा, जो केवल हमारे परिवार का नहीं समस्त समाज का कल्याण कर पाएगा। तो वो जो विचार है वो विचार एक्शन में तब्दील होगा, और जब एक्शन होगा तो उसका प्रतिफल भी आएगा, तो प्रतिफल दो तरह के होंगे, या तो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। अगर तो नकारात्मक प्रतिफल है तो हमारा जो प्रोसेस है वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर हमें सकारात्मक महसूस हो रहा है तो फिर मैं रिपीट करूंगा एक्शन को। लेकिन अगर शिक्षा लेने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है तो शिक्षा को भी मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो ऐसे में जब रिपीट एक्शन होता है तो वो आदतों में तब्दील हो जाता है, फिर ये आदतें लगातार बनी रहती हैं, तो ये आदतें आपके चरित्र का निर्माण कर देती हैं। जब चरित्र लगातार बना रहता है तो वह आपके भाग्य का निर्माण कर देता है। तो यही बुद्ध हमें समझा रहे थे कि मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं अगर वो शुद्ध हैं तो मेरा आने वाला भविष्य शुद्ध हो सकता, पवित्र हो सकता है, लेकिन अगर मेरे विचार अशुद्ध हैं तो मेरा भविष्य भी अशुद्धि की तरफ बढ़ रहा है
0: जी। यानी अपने विचारों को देखना हमें भगवान बुद्ध जो है वो सिखाते हैं जी। और कॉर्पोरेट में हर तरह के जो परिवार हैं वो जुड़े हैं और आप उनको ये सिखाते हैं
1: जी।
0: ये बातचीत जो है बहुत रोचक मोड़ पर है, और मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर इस मोड़ पर आप कौन सा गाना अपनी पसंद का हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
1: मैं यह बताना चाहूंगा कि गाना है, घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डामाडोल, तब मानव तो मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। अंगुलीमाल फिल्म का गाना है, 1960 में आया था
0: जी। बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है।
2: जब दुख

जब दुनिया

0: तो इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं, बौद्ध अध्ययन विभाग से हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और साथ ही कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से हैं सतीश कुमार जी। तो राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की तो एक शब्द जो है वो सहज ही मन में आता है, शांति। जब कभी हम उनकी छवि भी देखते हैं तो इतनी शांत स्वरूप है कि उसको देखकर शांति का संचार होता है मन में। और आज का जो युग है आपाधापी का है और हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो संघर्षों में घिरे हैं और कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं भी चल रही हैं, ऐसे में जो बौद्ध दर्शन है इसका क्या महत्व है और क्या ये आज ज्यादा जरूरी हो गया है या समय के साथ इसका प्रभाव कम होता गया है?
1: आपने अभी दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला
0: जी।
1: एक व्यक्तिगत शांति की बात की और दूसरी बात आपने ये कहा है कि दुनिया में इतनी अशांति फैली हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देखिए, दोनों दो बातें हैं। बुद्धिज्म में, बौद्ध दर्शन में और बौद्ध अध्ययन में इसके तीन सोपान हैं, पर्यत्ति, पटिपत्ति और पटिवेधन। पर्यत्ति के तहत हम थ्योरीज को जानते हैं, पटिपत्ति के तहत हम उसको अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं
0: जी।
1: और पटिवेधन के स्थिति में उस स्तर पे हम रियलाइज करते हैं। तो जब हम अपने मन को, ये चीज उपनिषद में भी है
0: जी,
1: जिसको हम कहते हैं नॉन माइंडिंग प्रोसेस, अमनी भाव। अमनी भाव में होता है कि जब आपका मन निरंतर चिंतनशील है
0: जी,
1: अगर आपके पास एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है तो आपका चिंतन ज्यादातर निगेटिव दिशा में जाएगा।

0: और जब वो निगेटिव दिशा में जाएगा, नकारात्मक दिशा में जाएगा, तो वो आपके हर सेल को प्रभावित करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो निगेटिव आएंगे और आप पूरी तरह परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए और काउंसलिंग जो है स्पिरिचुअल काउंसलिंग होनी चाहिए
1: जी।
0: हमें किस तरह की चीज सोचना है, हमें क्या सोचना है, ध्यान कैसे करना है और चित्त में शांति कैसे बना के रखना है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक जगह और जब उनके धर्म को कंक्लूड किया गया
1: जी।
0: तो वहां कहा जाता है सब पापस अकरणं, हर तरह के पाप को छोड़ देना, नहीं करना
1: जी।
0: कुशलस्य उपसंपदा, मोरल टेंडेंसीज को बढ़ाना। सचित्त परियोदपनं, प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर ओन माइंड, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। सचित्त परियोदपनं एतान बुद्धान शासनं, यही बुद्धों का शासन है। तो सील का पालन करते हुए, मोरलिटी का पालन करते हुए, मोरल प्रिसेप्ट्स का पालन करते हुए
1: जी,
0: आपको अपने कॉन्शियसनेस को, चित्त को परिशुद्ध कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत शांति इसी में निहित है। आपकी दूसरी बात थी
1: जी,
0: विश्व में इतनी अशांति क्यों फैली हुई है। एक कॉन्सेप्ट है विपल्लास। विपल्लास जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं किसी चीज को उल्टा देखना। जिसमें अशांति है उसमें हम शांति ढूंढते हैं, जहां दुख है उसमें हम सुख ढूंढते हैं। आज पूरी दुनिया अगर मानवता पे केंद्रित हो जाए, ह्यूमन सेंट्रिक हो जाए, तो तरह तरह के जो विध्वंसक हथियार हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। कोई भी वैज्ञानिक जब कोई विध्वंसक हथियार बनाएगा उसके पहले सोचेगा इसका उपयोग कहाँ होगा। उपयोग मानवों के ऊपर होगा, क्षति किसकी होगी, मानव की क्षति होगी, वो उसी दिन उसको रुक जाना चाहिए। बनाना क्या चाहिए, ऐसी ऐसी दवाओं का आविष्कार करना चाहिए जिससे कि व्याधियों का नाश हो, दुखों का नाश हो। ऐसा तो हो नहीं रहा है। और हम जबकि जो भी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाने वाली है
1: जी।
0: अगर हम टेरिटरी, आज इतिहास गवाह है, सिकंदर ने भी टेरिटरी जीता, सब ने टेरिटरी जीता, किसी के पास आज वो नहीं है। इस सत्य को, इस तथ्य को पूरे दुनिया के शासकों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी चीजें नश्वर हैं, क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है
1: जी।
0: इसीलिए अगर हम इन मुद्दों पे युद्ध की स्थिति लाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, समाज का सम्मान करना चाहिए और देश का सम्मान करना चाहिए। समस्याओं का समाधान बुद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध अध्ययन के अनुसार अपने आप खत्म हो जाएगा
1: जी। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत से अवसरों पर कहा है कि ये युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती है, ये कहा है। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है ये भारत से उपजा है और पूरी दुनिया में फैला है, हमने दुनिया को भगवान बुद्ध दिए, उनके दर्शन दिए, तो ऐसे में क्या वजह है कि हम दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वहां ये पाते हैं कि व्यवहार में जो बौद्ध दर्शन है उसकी सीख है, लेकिन भारत में कभी कभी हमारा अपना जुड़ाव जो है इनसे नहीं रहा है, क्या वजह आप पाते हैं?
0: देखिए, ऐसा नहीं है, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कि भारत में बौद्ध नहीं है
1: जी।
0: भारत की भूमि कभी भी बौद्ध विहीन नहीं रही है
1: जी।
0: आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जाते हैं सिक्किम में, मणिपुर के कुछ हिस्से में, लेह लद्दाख में, वहां की अधिकतम आबादी जो है वो बौद्ध आबादी है। एक तो ये बात
1: जी।
0: इसीलिए अगर ये हम कहते हैं, हाँ स्थान परिवर्तन हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है
1: जी,
0: लेकिन खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जब पूरे भारत में बौद्ध दर्शन, बौद्ध विचार लोगों के रक्त में समाया हुआ है
1: जी,
0: जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हो तो आप बुद्ध का नाम लेते हो, बुद्ध को स्वीकार करता है, पूजन करता है, यजन करता है। तो इस तरह से देखेंगे तो पूरे भारत के मानस में भगवान बुद्ध समाये हुए हैं
1: जी।
0: और कुछ ज्योग्राफिकल एरिया है जहां बुद्धिज्म प्रत्यक्ष रूप से आदिकाल से आज तक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है, प्रायोगिक नहीं है? हम तो सील का पालन करते हैं, हर भारतीय सील का पालन करता है, हर भारतीय समाधि का अभ्यास करता है, योग का अभ्यास करता है, हर चीज का अभ्यास करता है। हम कैसे मान लें कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है?
1: यानी हमारे व्यवहार में है लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो अच्छी बात हम फॉलो करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सहज शब्दों में हमें मिली है, वो असल में बौद्ध दर्शन का हिस्सा है।
0: बौद्ध दर्शन का भी हिस्सा है, क्योंकि ये अच्छी बातें, क्योंकि भारत का जो दर्शन है, जो सनातन शब्द है, जो सनातन परंपरा है, न ही बेरेन बेरानी सम्मंतित कुदाचनंग अबेरेन च सम्मंती एस धम्मो सनातनो, बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, मित्रता से बैर शांत होता है। अब इसको किसी धर्म विशेष में बांधना उचित नहीं है, भगवान बुद्ध के मुंह से भी यही बात निकला है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये बात भी आती है
1: जी।
0: तो भारत की भूमि ही ऐसी है, हमने कभी टेरिटरी नहीं जीता है, हमने तो सिर्फ विचार फैलाया है, शांति फैलाई है, शील फैलाया है, समाधि और प्रज्ञा का विस्तार किया है। इसीलिए हम पर पूरी दुनिया, मानवता का इतिहास ये आरोप नहीं लगा सकती कि मैंने शस्त्र बल से कहीं कुछ भी जीता है
1: जी।
0: तो भारत की भूमि तो ऐसी भूमि है।
1: तो जो नैतिक मूल्य हमें चाहे वो जातक कथाओं से मिले या माता पिता द्वारा सुनाई गई कहानी से मिले या बचपन में हम छोटी छोटी जो पुस्तकें पढ़ते हैं कहानियों की, कथा कहानियों की, उनसे मिले, वो बौद्ध दर्शन की भी बातें करती हैं और हमारे अन्य जो सनातन धर्म से जुड़े हुए अन्य जो दर्शन हैं उनकी भी बातें करती हैं। मैं यहाँ ये बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखूंगी। आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा जाए।
1: बहुत ही प्यारा सा गाना आपको सुनवा रहे हैं।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार जी। तो मैं सतीश जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो आप देते हैं उसमें आपने हमें बताया कि बौद्ध दर्शन जो है उससे बहुत सारी चीजें लेते हैं और उन्हें कैसे हम प्रैक्टिकली अपना सकते हैं, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं, ये आप सिखाते हैं। तो आपके सेशंस होते हैं अलग अलग जो विभाग हैं उनमें, मैं ये जानना चाहूंगी कि सेशन तो एक दिन का हुआ, दो दिन का हुआ, कैसे आप ये श्योर करते हैं कि जो आपने सिखाया है वो लोगों को समझ में आ गया है और उसके बाद वो व्यवहारिक तौर पर उसे फॉलो भी कर रहे हैं और इसका लाभ मिल रहा है उन सभी को?
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बौद्ध दर्शन को या धम्म के सिद्धांतों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। रीजन क्या है, वो बिजनेस वर्ल्ड है। बिजनेस वर्ल्ड में जो हमारी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले प्री टेस्ट होता है, तो सर्टेन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्ट टेस्ट होता है, तो पोस्ट टेस्ट में ये क्लियर हो जाता है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उनके क्या अंक रहे और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उनके अंक क्या रहे। अगर अंक बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा है, और अंक नहीं बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शायद वो समझ नहीं पाए हैं। तो ये तो एक सिद्धांत हुआ छोटा सा जिससे अंदाजा लगाएगा, परंतु धम्म की जो शिक्षाएं हैं उनको दो दिन में अगर सीख जाए ऐसा संभव नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि धम्म के सिद्धांतों को समझने के लिए उसे रेगुलर अभ्यास में लाना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से हम कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो मानसिक शांति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है
0: जी।
1: और मानसिक शांति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम विचार शून्य ना हो जाएं। और विचार शून्य होने के लिए हमें विपश्यना साधना करनी चाहिए। विपश्यना साधना बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आनापानासति, सांस का लेना और सांस का छोड़ना और मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करना सांस की आवन जावन के ऊपर। उससे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली मस्तिष्क को स्थिर करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क है एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। अभी हम यहां

0: है, ज्ञान का गुरु ध्यान है। मैं कुछ कह रहा हूं, अगर आपका मेरी बातों में ध्यान नहीं है तो मैंने क्या कहा आपको समझ नहीं आएगा। हम कोई मूवी देखने गए और मूवी में हमारा ध्यान नहीं है तो मूवी में चल क्या रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसके कौन कौन से कलाकार क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने अगर ध्यान नहीं दिया तो समझ नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं और माल बेचने की बात होती है या माल बेचने के बाद किसी समस्या के समाधान की बात होती है या फिर कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस की बात होती है या किसी टेक्निकल थिंग की बात होती है, तो ऐसे में व्यक्ति को ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली कि जो है आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और सांस की आवन जावन पे ध्यान लगाएं, ये तो मस्तिष्क को स्थिर करने का एक प्रैक्टिस है, बट रोजाना आपको एक काम कर रहे हैं तो एक काम करते समय उसी में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए फोकस, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक जो चल रहा है उसकी मुझे समझ तो हो,
1: क्योंकि यानी जो बातें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग का हिस्सा मानते हैं कि बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप कुछ करें और सहज भाव से, सजग भाव से करें और शांत भी रहें, चीजों को समझें, है ना, और अपने आप को भी जो है वो जज करते रहें, सेल्फ ग्रूमिंग करते रहें, वो सब जो है इनके बीज आप कह रहे हैं कि वो ध्यान में है और ध्यान जो है वो धम्म से जुड़ा है। तो ये शिक्षाएं जो है आप इस तरह से युवाओं तक पहुंचाते हैं। जी, मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो, अगर हम बुद्धिस्ट स्टडीज की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, तो इसे रिलीजन स्पेसिफिक मानते हैं, कैसे बौद्ध दर्शन जो है वो धर्म से अलग है?
0: धम्म की जो शिक्षाएं हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी एस धम्मो सनंतनो, ये एक्चुअली धम्म है, धर्म है ही नहीं
1: जी।
0: जो धम्म है वो धर्म से बड़ी चीज है। धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूर्य दिखे तो दिन है वरना काली रात। तो लोगों को धर्म ऐसा लगता है कि पूजा पद्धति धर्म है
1: जी।
0: लोगों को लगता है परंपराएं निभाना,

0: तरह से अग्नि जलाने का काम करती है, पानी शीतलता देने का काम करता है। तो पानी का धर्म है शीतलता देना
1: जी,
0: अग्नि का धर्म है वो गर्माहट देती है। ठीक उसी तरह से जो मनुष्य का धर्म है
1: जी,
0: वो है करुणा, मैत्री, बंधुत्ता। उसके आचरण में, उसके व्यवहार में मानवता परिलक्षित होनी चाहिए। जब मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा उत्पन्न होने लगे जहां मनुष्य केवल मनुष्य प्रतीत होता है, जहां लिंग भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां जाति भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां भाषा भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां क्षेत्रवाद समाप्त हो जाता है, जहां रंग भेद समाप्त हो जाता है, जहां विभिन्न प्रकार की व्याधियां स्लोली एंड ग्रेजुअली समाप्त हो करके मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती है, तो उस समय हम धम्म की गंभीरता को आचरण में धारण करने का कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य होने के बाद मुझे एक मनुष्य छोटा प्रतीत होने लगता है, तो वहां मिलावट आ जाती है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वहां पर उसकी मानसिक अवस्थाएं विकृत हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां समाज में उपलब्ध हो रही हैं, बढ़ रही हैं या बढ़ाई जा रही हैं, उनका समापन ही धम्म की तरफ हमें लेकर के जाता है
1: जी। तो समसामयिकता उसकी ये है कि जो सामाजिक कुरीतियां उस वक्त थी उनको दूर करने के लिए धम्म जो है वो शुरू हुआ, और आज भी जो सामाजिक कुरीतियां हम अपने आसपास देखते हैं उनका निवारण हम इस दर्शन में पाते हैं जी। बहुत अच्छे से आपने समझाया। यहां मैं आपकी पसंद का एक और गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती
0: हूं। इकबाल फिल्म का एक गाना है आशाएं
1: जी, ये आपको पसंद है गाना
0: जी?
1: बहुत ही अच्छा सा गाना है, एकदम से मूड जो है वो बहुत अच्छा कर देता है। तो हमारे सभी श्रोताओं को हम ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार हमारे विशेषज्ञ हैं और हम अपने विशेषज्ञों से ये जान रहे हैं, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज, इनसे हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से बौद्ध दर्शन जो है वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बना रह सकता है और कैसे हम अपने रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बौद्ध दर्शन से भी निकाल सकते हैं और वो समाधान हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अब राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की तो एक शब्द बार बार हमें सुनाई देता है, हम पढ़ते हैं मध्यम मार्ग। आज का जो युग है, एक तो इस पर बहुत ज्यादा दबाव हम महसूस करते हैं अपने आप को हर पल साबित करने का, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हर समय हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है, पीयर प्रेशर एक महसूस होता है, ग्लोबल विलेज में हम जी रहे हैं, हम AI जो है अब जीवन का हिस्सा बन गया है, तो जहां कृत्रिम बौद्धिकता जो है उस पर हमारी डिपेंडेंसी हो रही है, वो हमारे जीवन को कहें कि कंट्रोल करती जा रही है, वहां पर मध्यम मार्ग जो है उसे हम कैसे अपना सकते हैं और इसका क्या लाभ हमें होगा?
1: देखिए, मध्यम मार्ग जो है वो एक तरह से बौद्ध दर्शन का मेरुदंड है।
0: जी,
1: भगवान बुद्ध ने अपनी ही वाणी में कहा था कि मझिमा पट्टी पटी पदाति चक्षु करनी यान करनी, ये जो मध्यम मार्ग है यह आंख देने वाला है, आई ऑफ विजडम देने वाला है और ये हमें नॉलेज देने वाला है। क्योंकि द्वे अंते भिक्खवे पब्बजितेन न सेवितब्बा योचायं कामे सुकाम सुखल्लिकानु योगो हीनो गम्मो पुथुज्जनिको अनरियो अनर्थ संगितो, यह हमें दो अंतों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मध्यम मार्ग, अब जैसे देखिए आपकी चर्चा में परिचर्चा में कॉरपोरेट शब्द बार बार आ रहा
0: जी।
1: है, मध्यम मार्ग में एक सोपान है सम्मा आजीवो राइट लाइवलीहुड, इसमें बताया गया है कि किस तरह की आजीविका हमें स्वीकार करनी चाहिए, किस तरह के आजीविका पे हमें जीवन जीना चाहिए
0: जी।
1: और यही सारी चीजें आगे बढ़ते हुए सुमाकर की एक किताब आई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें उन्होंने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स शब्द को क्वाइन किया था
0: जी।
1: और आज ये जो है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एक अल्टरनेटिव सिस्टम बन चुका है पूरे विश्व में और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भी शुरू हो गई है। अगर इसी मध्यम मार्ग को हम उठाए मेडिकल साइंस के फील्ड में ले चलते हैं तो वहां भी जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं उसकी वहां पे बहुत प्रासंगिकता बढ़ गई है
0: जी।
1: अभी 7 टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं जो काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी के टेक्निक्स हैं जो पूरी तरह बौद्ध दर्शन पे आधारित है, माइंडफुलनेस पे आधारित है, जो मेडिकल साइंस की बात है
0: जी।
1: शिक्षा में हम अपने मेंटल कैपेसिटी को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे मजबूत करें जिससे कि हमारा जो एक ह्यूमन कैपेसिटी है वो विकसित होकर सामने आए
0: जी।
1: रही बात जो मैकेनाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया का, हम जो मशीनों पे आश्रित हो रहे हैं, तो देखिए मशीन को चलाएगा कौन? मशीन को मनुष्य चलाएगा, मनुष्य को उसका मन उसको गाइड करता है। चूंकि आपने धम्मपद में देखा होगा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, अब AI कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। हम AI के माध्यम से हर चीज को देखें समझें, लेकिन उसके जड़ में नैतिकता शब्द का होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमें नैतिक होना बहुत आवश्यक है
0: जी।
1: और नैतिक सील समाधि और प्रज्ञा, हमें सील का पालन करते हुए समाधि पे चलते हुए प्रज्ञा हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम वायरस पे बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और हमें हमारे अंदर सील की भावना है, हम सील का विकास कर रहे हैं, सील का अभ्यास कर रहे हैं, हम कभी ऐसा वायरस नहीं बनाएंगे जिससे कि कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी
0: जी।
1: हमें उन चीजों का आविष्कार करना है जो मानव के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, देश और राष्ट्र के लिए जो उपयोगी हो
0: जी।
1: हम मस्तिष्क और मशीन का इस्तेमाल दवाओं के लिए करेंगे, मनुष्य के मनुष्यता के विकास के लिए करेंगे, न कि ध्वंस के लिए करेंगे
0: जी।
1: तो यहाँ पे बुद्ध की वाणी, बुद्ध का दर्शन समीचीन है कि मनुष्य का मशीन का इस्तेमाल मनुष्य नैतिकता के साथ करे और अपने आप को नियंत्रित रखे और इस सिद्धांत को रखे, सदैव सामने रखे, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा स्वचित्त परियोधपनं एतान बुद्धान शासनं। इसको ध्यान में रखे, कोई पाप न होने पाए, चित्र परिशुद्ध हो जाए, कुशल वृत्तियों का विकास हो और हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, पूरे मानवता की शांति होगी, विश्व शांति होगी।
0: जी, यानी बौद्ध दर्शन में जो है वो इस तरह की बातें हैं कि व्यवहारिक तौर पर हम अपना सकते हैं और ये हमें कहीं आगे बढ़ने से नहीं रोकती। हम आधुनिकता शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं तो हम लगातार आधुनिक हो सकते हैं, अपने आसपास की चीजों से, समसामयिक समाज से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये दर्शन हमें हमारे अंदर एक तरह का नैतिक मूल्य जो है वो हमेशा रखेगा, जो हम काम करेंगे वो सही दिशा में जाएगा।
1: बिल्कुल
0: जी। मैं यहाँ आपसे वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं उनकी बात करना चाहूंगी। पर्यावरण हमारे सामने एक चुनौती है। हम लगातार बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हम बात करते हैं कि परिवार जो हैं वो अब धीरे धीरे एकल परिवार होते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, और रोजगार एक समस्या है युवाओं के सामने, और अगर है भी रोजगार उनके पास तब कहीं ना कहीं वो आत्मसंतुष्टि जो है वो भाव कम होता जा रहा है, प्रतिस्पर्धा है, एक भाव मन में हमेशा रहता है असंतुष्टि, और ऐसा माना गया है कि आप असंतुष्ट होंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो आपको प्रयास के लिए प्रेरित करेगी असंतुष्टि आपकी। बौद्ध दर्शन इन सब के बीच कैसे हमें संतुलित रहना सिखाता है?
1: यहाँ भी आपने कई बिंदुओं पे एक साथ प्रकाश डाला है
0: जी।
1: सबसे पहले आपने पर्यावरण के ऊपर प्रश्न किया है, दूसरा प्रश्न है आपका परिवार टूट रहा है
0: जी।
1: तीसरा प्रश्न है बेरोजगारी और संतुष्टि। पर्यावरण को लेके बौद्ध दर्शन में एक नई विधा की शुरुआत हो गई है 90 के दशक के आसपास, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है? जब हम तृष्णा का त्याग कर देंगे
0: जी,
1: अगर थोड़े से प्रकृति के दोहन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन हम तृष्णा के कारण जो है प्रकृति का दोहन असीमित रूप से करते हैं
0: जी।
1: यहाँ पे बौद्ध दर्शन में वृक्ष को कैसे बचाना है, जल की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, वायु की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें मिलती हैं और ये सब मिलकर के एक नए विषय का जन्म देता है, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें जो बौद्ध साहित्य है उसमें स्थान स्थान पर इस बात पे प्रकाश डाला गया है कि कौन व्यक्ति नीच है जो बीज को नष्ट करता है, जो पौधे को नष्ट करता है, जो वृक्ष को नष्ट करता है, उसी को हम नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण के लिए बुद्धिज्म में, और इसका परिणाम है कि आज थाईलैंड में भिक्षु जो है वो जब पेड़ कटने जाते थे तो भिक्षु उनको पकड़ लेते थे या पेड़ को चीवर पहना के उसको भिक्षु का स्वरूप दे देते थे जिससे पेड़ कटना बंद हो जाता था। उसी तरह की चीज हमारे यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा करते थे, चिपको आंदोलन, वो जाके पेड़ से चिपक जाते थे
0: जी।
1: ये हमारे रक्त में बसा हुआ है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, और बौद्ध दर्शन और बौद्ध सिद्धांत तो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे भारत हो। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि परिवार टूट रहे हैं क्योंकि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं
0: जी।
1: स्व के लिए जीना पसंद करते हैं, हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने समाज को नहीं देख पाते हैं। अगर हम सबको एक साथ देखना शुरू करें, समेकित रूप से देखना शुरू करें, तो परिवार टूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सबकी भूमिका इस समाज में, इस परिवार में निर्धारित है। हम अपनी भूमिका के तहत चलें, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। हम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे को समझ के जिए, एक दूसरे को समझने के लिए जिए, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा, समाज कभी नहीं टूटेगा। और तीसरी बात आपने कहा बेरोजगारी और असंतुष्टि। संतुष्टि परमं धनं की बात बुद्धिज्म में कही गई है। सबसे पहले बुद्धिज्म में एक चीज बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि सभी चीजें नष्ट हो जाने वाली है, क्षण क्षण परिवर्तित होने वाली चीजें हैं। तो जो चीजें नष्ट होने वाली है उससे मोह क्या नहीं। रही बात बेरोजगारी की, तो हम जब अपनी आवश्यकताओं को न्यून कर लेंगे तो हमें बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपना एक आदर्श जीवन जी पाएंगे और यहाँ पे हमें तृष्णा से मुक्ति मिलेगी। हम तृष्णा से दूर हो जाएंगे, हमारा समाज भी एक उज्ज्वल एक उत्कृष्ट समाज में परिवर्तित हो जाएगा, परिवार परिवर्तित हो जाएगा और व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार जो है बौद्ध दर्शन पर्यावरण से लेकर के सामाजिक प्रदूषण से लेके और व्यक्तिगत प्रदूषण हर स्तर पे हमें पूरी तरह से नियंत्रित करने की नियंत्रित रखने की बात करता है
0: जी। और जो ये कहा जाता है कि हम असंतुष्ट रहेंगे वो प्रेरणा बनेगी आगे बढ़ने के लिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, असंतुष्ट रहेंगे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और इस कारण से हम अब खुद को दबाव में रखेंगे
0: जी,
1: हर समय दबाव में रखेंगे कि जो मिला नहीं उससे ज्यादा मिलना चाहिए। हम अपने बच्चों को दबाव में रखेंगे कि तुम जितना पढ़ रहे हो उससे काम नहीं चलेगा, और अधिक पढ़ो। बच्चों को दबाव में रखेंगे, समाज को दबाव में रखेंगे। जब आप असंतुष्ट हैं, आपसे जुड़ा हुआ समाज भी असंतुष्ट होगा, परिवार भी असंतुष्ट होगा। इसीलिए ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें संतुष्ट होकर जीवन जीना चाहिए। लेकिन अब आप कहती हैं कि असंतुष्टि जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, नहीं, भारत में एक एक क्षण के इस्तेमाल की बात की जाती है और जब हम उपलब्ध एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं तो हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके लिए संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट होने की जरूरत है और एक एक क्षण का सही अर्थ में सदुपयोग करने की जरूरत है।
0: संतुष्ट होकर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट करते वक्त हमें पूरी तरह वहां पर उपस्थित रहना है, सतर्क होकर और ध्यान से काम करना है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल।
0: तो कौन सा गाना आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
1: हमको मन की शक्ति दे, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद की जय करे।
0: जी, गुड्डी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा ये गीत है और सच में ये हमारे मन को जो है वो बहुत ही बलशाली बना देता है। ये गाना सुनकर ही अंदर जो है वो भाव इस तरह का पैदा होता है। आपको सुना रही हैं गुड्डी फिल्म का गीत।

0: तो इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ पे, जो कि हमने बचपन से सुना है और हमारे स्कूलों में जो है ये प्रार्थना भी होती रही है, तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। चलते चलते सतीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बौद्ध दर्शन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी परिस्थिति है ही नहीं जिसकी बौद्ध दर्शन बात न करता हो। हम चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, या हम व्यक्तिगत स्वभाव की बात करें, और या फिर हम आध्यात्मिक उत्थान की बात करें, अपदीपो भव वाला भाव भी हमें सिखाता है बौद्ध दर्शन। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम बुद्धिज्म को, बौद्धिक जो स्टडीज हैं, इन सब को धर्म से अलग देख लेते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद अगर हमारे युवा साथी कुछ पढ़ना चाहें, इस तरह की कोई मोटिवेशनल जो क्लासेस होती हैं, सेशंस होते हैं, वो करना चाहें, तो कैसी अप्रोच उन्हें करनी चाहिए, कहाँ से वो ये सब पढ़ें जानें?
1: सबसे पहले तो मैं यहाँ ये सजेशन देना चाहूंगा कि विपश्यना साधना के सेंटर्स पूरे भारत में हैं
0: जी,
1: जो आपको रीचेबल हो वहाँ 10 दिन का कोर्स होता है, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन वहाँ स्टे भी फ्री होता है और खाना पीना भी फ्री होता है, उसके लिए देर इज नो चार्ज। तो विपश्यना साधना में जाएं, वहां जाकर हमें धम्म के मूल सिद्धांत समझ में आते हैं, क्योंकि जो धम्म है, धम्म अनुभव करने की चीज है, अभ्यास करने की चीज है। तो एक तो यहां से कर सकते हैं, दूसरा हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक रूप से कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रतिपादित कई बुक्स हैं, उनमें एक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, उस पुस्तक में धम्म को लेकर के बहुत अच्छी जानकारियां उपलब्ध है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये कामना करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं और हमारे जेंजी जो श्रोता हैं, वो बहुत सारी जानकारी रखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम समय में वो अपने आप को बहुत ज्यादा परिपक्व करने की प्रयास में लगे होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जैसे वो समय का सदुपयोग करते हैं, उसी सदुपयोग के माध्यम में वो ये पुस्तकें भी पढ़ेंगे, किसी ना किसी माध्यम से उन्हें प्राप्त हो ही जाएंगी। और हमें बताया राणा पुरुषोत्तम जी ने कि किस तरह से हम अपने व्यवहार में बौद्ध दर्शन जो है उसे शामिल कर सकते हैं, और जीवन की उस तरह की कोई समस्या है नहीं जिसका समाधान हमें बौद्ध दर्शन से न प्राप्त हो, बस हमें स्वयं पर

0: काम करने की आवश्यकता है। और हमें सतीश कुमार जी ने बताया कि ये दो दिन में या किसी एक सेशन से नहीं होगा, निरंतरता इसमें जरूरी है। लगातार जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना पाएंगे और बेहतर व्यक्ति से बेहतर समाज बनेगा और बेहतर समाज से हमारा राष्ट्र और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये मूल्य जो है वो जाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप दोनों ने हमें बौद्ध दर्शन जो है उसे समझाया है और हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोता जो हैं इसके बारे में जो भी जाना है उसे अपनाएं और उनका लाभ हो। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, बौद्ध अध्ययन विभाग नव नालंदा महाविहार संस्कृति मंत्रालय नालंदा से आप जुड़े हैं और लगातार जो है वो बौद्ध दर्शन आपके माध्यम से प्रसार भी पाता है और आज हमारे स्टूडियो में भी आप आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी आपका, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका है और आपके माध्यम से हमारे युवा साथी जो हैं वो बौद्ध दर्शन को समझ पाते हैं और प्रयास कर पाते हैं उसे अपने व्यवहार में उतारने का। आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत साधुवाद।
0: तो श्रोताओं, आज हमने पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता समझी। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: 12 बज चुके हैं, आइए एक नजर डालते हैं अब तक के प्रमुख समाचारों पर। मुंबई विश्वविद्यालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल्स के इस्तेमाल के जरिए शिक्षा और प्रशासन में डिजिटल बदलाव की गति तेज करने के प्रयास शुरू किए हैं। इस सिलसिले में विश्वविद्यालय के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में गूगल फॉर एजुकेशन के सहयोग से विश्वविद्यालय परिसर में जेमिनी और गूगल के अन्य AI टूल्स पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कुलपति रविन्द्र कुलकर्णी ने कहा कि AI तकनीक शिक्षा और प्रशासन को तेज, अधिक प्रभावी और छात्र केंद्रित बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आशंकित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। ब्रिटेन होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत HMS ड्रैगन तैनात कर रहा है। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस युद्धपोत की तैनाती का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय गठबंधन में भाग लेना है। बात अब खेल जगत की। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। ये थे इस घंटे के अब तक के प्रमुख समाचार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 107.1। मैं हूं RJ भावना
2: और मैं हूं आपके साथ RJ रवि। आज वैसे कैफे की खुशबू कुछ बदली बदली सी लग रही है,
1: क्योंकि आज हमारे म्यूजिक कैफे में चाय और कॉफी पर बैन लगा दिया है, यानी नो एंट्री का बोर्ड लगा है।
2: क्या क्या बात कर रही हो, दोपहर के 12 बजे हैं, अभी काम शुरू किया है, कैफे में बैठे हैं और तुम कह रही हो कि कैफीन बैन है।
1: देखो रवि, कॉफ़ी और चाय की तो मुझे भी तलब बहुत होती है, अक्सर हम म्यूजिक कैफे में उसी की बात करते हैं, लेकिन आज कुछ सोच समझकर मैंने इसे बैन किया है। बाहर सूरज देवता फुल फॉर्म में है, मई की धूप सड़कों पर सबको ऑमलेट की तरह ट्विस्ट कर रही है, टर्न कर रही है, और इस चिलचिलाती धूप में शरीर को कॉफ़ी और चाय नहीं पानी की तलब है। यानी कि आज हम सिर्फ H2O पियेंगे और हाइड्रेशन ही आज हमारा असली नशा बनेगा।
2: ओहो, तो आज म्यूजिक कैफे में सिर्फ शीतल जल और गपशप मिलेगी।

0: 12:14 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1। मैं हूं आरजे भावना और रवि भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। वेल, आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं। विजेंद्र घाटो लकोला से, अजय साखरे इंदौर से हमें मैसेज करते हैं, आज गर्मी में पानी के गाने सुनकर दिल खुशी से पानी पानी हो गया। वेल, क्या बात है। संजय दर्शन, पंकज महोर, शुभदा जी हमें आइडियाज दे रही है। इनफैक्ट आप के थ्रू मुझे आइडिया मिला है, क्यों ना आप आज का मेन्यू डिसाइड करें। शुभदा जी की तरफ से मेन्यू आई है कि पाना जो है, आम के रस का पाना, ये भी पी सकते हैं, काफी अच्छा होता है गर्मियों में। वेल, आपको क्या लगता है, क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए हमारे आज के कैफे के मेन्यू में? आप व्हाट्सएप कीजिए 8657661071 पर एंड बताइए कि आप आखिर इन गर्मियों में चाय या कॉफी के अलावा कौन सी चीज या कौन सी ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। वैसे रवि,
1: yes?
0: तुम बताओ, तुमने कल कितनी कॉफी पी है?
1: पूछो मत, मेल का इनबॉक्स भरा हुआ था, डेडलाइन सर पर थी, तो मैंने 3 मग गटक लिए।
0: यही तो प्रॉब्लम है, हम बर्नआउट को छुपाने के लिए कैफीन का सहारा लेते हैं। हम थकते हैं तो आराम करने की जगह कॉफी या चाय पी लेते हैं। कभी कभी तो लगता है रगों में खून नहीं बल्कि एस्प्रेसो दौड़ रहा है। इनफैक्ट हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि थकान मिटाने का मतलब ही हमारे दिमाग ने ये ठान लिया है कि कॉफी और चाय ही पीना है। वेल, इसके अलावा ये तो हमने बैन कर रखा है, लेकिन आज के इस शो में मैं चाहती हूँ हमारे लिसनर्स हमें सजेशंस दें। वैसे तुम्हारे पास सजेशंस है तो तुम भी बता देना कि पानी, नारियल पानी, जूसेस और आम पन्ना आ चुका है, और क्या होना चाहिए हमारे आज के मेन्यू में।
1: वो तो सही है, लेकिन सबसे पहले हमें अपना पॉज बटन दबाना चाहिए, ठीक है? और म्यूजिक कैफे में आज पॉज बटन दबाएंगे, शरीर को पानी देंगे, दिमाग को शांति।
0: चलो फिर, आपके इस दिमाग को शांत करने के लिए ये अगला गाना मोहित चौहान की आवाज में।

0: हमारे साथ रामगंज खांडवा से जुड़ चुके हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू। शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अनय अनाया ईशु बाबा। शीतला चौक खांडवा से विशाल सिंह, विवेक सिंह एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। रिक्वेस्ट यानी मेन्यू के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा मेन्यू, आप बताइए कि इस मेन्यू पर कैफे के क्या आना चाहिए। चाय कॉफी के अलावा कैफीन बैन है आज, तो शुभदा जी ने हमें बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन दिया है। क्या रवि तुमने कभी वाटरमेलन छाछ पिया है?
1: हाँ बिल्कुल पिया है, छाछ तो बहुत सेहत के लिए बेहद।
0: वाटरमेलन छाछ
1: नहीं, वाटरमेलन छाछ नहीं पिया है।
0: ये शुभदा जी आप इसकी रेसिपी जरूर हमें बताइए, हम जानना चाहेंगे कि ये वाटरमेलन छाछ के टेस्ट कैसा है और हाँ एक्सपीरियंस के साथ। वेल, गर्मी के मौसम में प्रणव शिंदे जी हमें सजेस्ट करते हैं कि हाइड्रेट रखना बॉडी को काफी जरूरी है ठंडक पहुंचाने के लिए। नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, आम पन्ना, बेल का शरबत, सत्तू, ये तो मैं भी लिस्ट में डालने वाली थी। देखा कितना कितना सिंक है हमारे लिसनर्स का हमारे साथ में। तरबूज का जूस और पुदीने का पानी पीना चाहिए, ये सभी शरीर का तापमान कम करने और लू से बचने में मदद करते हैं। वेल दैट्स सो ट्रू। पंकज जी हमें कहते हैं कि पानी पर गीत जो उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं और वो धूप के दिनों में नींबू शरबत और लस्सी पीना पसंद करते हैं। वेल, आप सभी के चॉइसेस इस मेन्यू में काउंट होते जा रहे हैं। प्रमोद चिंचोलकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गर्मी के लिए वो आम का रस जो है वो काफ़ी इंजॉय करते हुए पीते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास मैसेज आया है संजय दर्शन जी का, वो जी कहते हैं कि अपने आप को अंदर से कूल रखना चाहिए, खामखा स्ट्रेस नहीं लेने का, बेल का शरबत और वरियाली और देसी गुड़ का शरबत, कोकम शरबत भी अच्छा ऑप्शन है।
1: वेल, इससे काफी इंफॉर्मेटिव है।
0: ऑफ कोर्स, इनफैक्ट इस बात से मुझे एक और चीज याद आई है, एक वाटर फ्रूट होता है, ताड़कुला कहते हैं शायद, ये भी काफी अच्छा होता है आई बिलीव। वेल, आपके पास और क्या क्या मेन्यू है बताइए। देखिए मुझे प्याज लग चुकी है ऑलरेडी और बहुत ही ज्यादा प्याज लग रही है। इनफैक्ट पानी की बोतल दे दो यार, मुझे पानी पीने दो। वेल, इस बार आप क्या कह रहे हैं रवि, आपको क्या लग रहा है कैसा?
1: पानी पी पी करना मैं लगता है कि मैं मछली बन गया हूं। पर सच कहूं दिमाग थोड़ा सा हल्का भी लग रहा है।
0: देखा, कहा था मैंने, हम अक्सर यू नो बर्नआउट को छुपाने के लिए भी काम के वक्त स्पेशली या घर पर बैठे बैठे दिमाग कितना चलता है कि बर्नआउट होने के बावजूद हम कॉफी पीने ही भागते हैं, कोई भी मौसम हो, कोई भी समय हो। और इसीलिए बॉलीवुड में भी, वहां पर भी तो काम का बड़ा क्रेज है, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन को देख

0: वो आज भी हमसे ज्यादा फिट और एक्टिव है।
1: बिल्कुल, पर अमित जी भी कहते हैं कि सेहत पहले, वो तो सिर्फ सादा खाना और ढेर सारा पानी पीते हैं।
0: वेल दैट्स एब्सोल्युटली राइट। वेल हम ऑफिस के डेडलाइंस के चक्कर में अपनी बैटरी ड्रेन कर लेते हैं और फिर उसी कॉफी से या चाय से चार्ज करने की कोशिश करते हैं। ये सर्कल घूमते रहता है। तो आज हम चार्ज तो होंगे लेकिन सिर्फ म्यूजिक और पानी से।
1: सही बात है, चलिए बर्नआउट को कहते हैं बाय बाय और सुनते हैं ये रिफ्रेशिंग ट्रैक।

आपने ट्यून किया है 107.1 FM रेनबो मूवी माइलस्टोन्स विद भावना सोमाया। आज की फिल्म गुरुदत्त निर्मित दिग्दर्शित एवं वहीदा रहमान और गुरुदत्त अभिनीत कागज के फूल।

एक सफल गाना या एक एवरग्रीन गाना या यादगार गाना वही होता है जिसकी धुन, शब्द, पिक्चराइजेशन, परफॉर्मेंस सब कुछ हमारे मन को भा जाए। और वक्त ने किया क्या हंसी सितम वो गाना है। ये गाना फिल्म के स्टूडियो के अंदर एक सेट में पिक्चराइज है जहां द डायरेक्टर एंड द एक्ट्रेस आर गोइंग थ्रू देयर एंग्विश एंड कॉन्फ्लिक्ट। और आप में से जिन्होंने ये फिल्म देखी है तो याद होगा कि सीलिंग से दो बीम ऑफ लाइट फर्श पर गिरती है। वी के मूर्ति जो कुछ कमाल करना चाहते थे उन्होंने इस गाने के लिए ऊपर से दो मिरर्स यानि आईना लटकाए इस तरह से कि उसकी रोशनी सीधे फर्श पर गिरे। और इतना कमाल का इफेक्ट हुआ कि इस शॉट की तारीफ न सिर्फ हमारे देश में बल्कि

परदेश में जहां जहां ये फिल्म दर्शाई गई सबने सिनेमाटोग्राफर की तारीफ की। कागज के फूल देश की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी दैट एड्रेस्ड मेनी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप इश्यूज, मगर फिल्म की पेस और फिल्म का कंटेंट इतना ज़्यादा हैवी था कि जब फिल्म सिनेमा हॉल में लगी तब ऑडियंस थिएटर में जाने के लिए कतरा रही थी। हालांकि फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले, क्रिटिक्स ने जमकर तारीफ की, मगर ये सारे रिव्यूज़ मिलकर फिल्म की टिकट्स नहीं बिकवा पाए। जो थिएटर में बैठे भी थे वो बेचैन थे और कुछ लोगों ने तो थिएटर इंटरवल के पहले ही छोड़ दिया, और ये सारे समाचार गुरुदत्त के पास पहुंच रहे थे। जब एक फिल्म नहीं चलती है तब उसकी बहुत सारी वजह ढूंढी जाती है, क्योंकि जब फिल्म चलती है तो सब सेलिब्रेशन में बिजी रहते हैं और सबने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिया। अबरार अलवी साहब, जिन्होंने गुरुदत्त साहब के साथ बहुत सारी फिल्में की है, राइटर है, डायरेक्टर है, का ये कहना था कि कॉमन मैन सुरेश सिन्हा के प्रॉब्लम को नहीं समझ पाए, क्योंकि कॉमन मैन की समस्या है रोटी कपड़ा और मकान, और उनको लगता था कि सुरेश सिन्हा जब सूट पहनकर अच्छे घर में रहता है तो उनकी समस्या क्या है। मगर एक आर्टिस्ट की समस्या किस तरह से किसी को समझाई जा सकती है। एसडी सबर्बन साहब ने जो कहा था वो सच हुआ, क्योंकि कागज के फूल ना चलने की वजह से गुरुदत्त साहब के दिल को कुछ ऐसी ठेस लगी कि इस दर्द से वो कभी उभर नहीं पाए। वो फिल्म प्रोड्यूस करते रहे, उनका प्रोडक्शन हाउस चलता रहा, मगर उन्होंने किसी भी फिल्म में आफ्टर कागज के फूल एज डायरेक्टर नाम नहीं लिया। सब जानते थे कि वो हर प्रोजेक्ट में क्रिएटिवली इन्वॉल्व थे, सब जानते थे कि वो हर प्रोजेक्ट में अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंटेलिजेंस, अपने ऑप्शंस डालते रहते थे, मगर उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं ली इवन फॉर साहेब बीवी और गुलाम। साहेब बीवी और गुलाम इज क्रेडिटेड टू अबरार अलवी साहब, और हमारे जैसे क्रिटिक्स आज तक इस पर चर्चा करते हैं कि क्या साहेब बीवी और गुलाम अबरार अलवी साहब ने डायरेक्ट की थी या गुरुदत्त साहब ने डायरेक्ट की थी, और अगर अबरार अलवी साहब ने डायरेक्ट की थी तो क्या ये गुरुदत्त साहब के इनपुट्स के बगैर ऐसी फिल्म बन सकती थी। एक नाकामयाब फिल्म एक आर्टिस्ट को किस तरह से तोड़ देता है, क्योंकि ये जहर गुरुदत्त साहब की जिंदगी में भी फैल गया। उनकी जिंदगी इस फिल्म के बाद पूरी तरह से बिखर गई, और जो उनकी ज़ाती जिंदगी में हुआ वो तो इतिहास गवाह है।

आशा करती हूँ कि आप सबको हमारा ये आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। ये सीजन वन का आखिरी एपिसोड था और मुझे तो बहुत मज़ा आया ये सारे मूवी माइलस्टोन्स आपके सामने पेश करने में। देखते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे सीजन टू में। अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही और आप सबने अगर हमें चिट्ठियाँ लिखी तो सीजन टू भी बहुत जल्द पेश करेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 107.1। मैं हूं भावना सुमाया और तब तक

0: लिए मुझे दीजिए इजाजत।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम मूवी माइलस्टोन्स विद भावना सोमया। आज की फिल्म थी गुरुदत्त निर्मित दिग्दर्शित और वहीदा रहमान और गुरुदत्त अभिनीत कागज के फूल। निर्मात्री वैशाली त्रिवेदी। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए FM रेनबो 107.1 FM।

0: महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमान एन्द पोरुलैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमारी और अजंता न्यू

0: शामिल है डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज पर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने

0: ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिशूल जंगल उस मंदिर को आएंगे। 1 2 त्रिशूल जंगल उस मंदिर को आएंगे।

का वक्त है और ये वक्त है लव यू जिंदगी का और लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं आप अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। और आज हमारे साथ एक साथी और हैं और आज एक खास मौका भी है और उस खास मौके के अकॉर्डिंग हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर ढूंढा, सुना, पढ़ा और वो आपको सुनाते हैं। शेर है कि चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। आज एक ऐसा खास मौका जहां से जिंदगी को जिंदगी मिलती है, मदर्स डे। माँ एक ऐसा शब्द जिसमें सारी कायनात सिमट कर आ जाती है। तो इस मदर्स डे, इस खास मौके पर अपनी माँ के साथ आप वक्त बिताएं, उन्हें उन खुशी के मौकों से रूबरू कराएं, उनके साथ ऐसे खुशी के पल साझा करें जो इस मौके को और ख़ास बना दें। फिलहाल तो हम आपका ये मौका और ख़ास बना रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ।

0: मिनट का वक्त और लुत्फंदोज हो रहे हैं आप लव यू जिंदगी में आदित्य, और हमारे साथ एक साथी और हैं जो सब कुछ काम अपनी इच्छा से करती हैं। उनका नाम है स्वेच्छा, और स्वेच्छा अपने बारे में बहुत सारी बातें बताने वाली हैं आपको, अपने बारे में और किसी और के बारे में भी, एक खास रिश्ते के बारे में जिसके बारे में हमारी पिछली बात हुई भी। स्वेच्छा, अभी हमारी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना आपको? ओके जी, तो इरशाद फरमाइए आप।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज है मदर्स डे, तो सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस बारे में तो जितनी बात करें उतनी कम है। साथ ही साथ लव यू जिंदगी चल रहा है, तो माँ की बात चल रही है, साथ ही साथ लाइफ के बारे में भी कुछ बातचीत करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना परफेक्शन का बड़ा टाइम आ गया, मतलब परफेक्ट चाहिए सब कुछ, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। लाइफ कोई रील की तरह परफेक्ट तो नहीं है ना। कभी कुछ नेटवर्क खराब है, कभी मूड, तो कभी कभी बैंक बैलेंस भी लो हो जाता है। लेकिन इतना लो फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी की बात कर रही हूँ, तो कभी कभी तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने कभी कभी की बात की है, तो कुछ दिन लाइफ के लो हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़िंदगी हमें खुद से और हमारी लाइफ से प्यार करने के बहुत सारे मौके देती है। तो हमें उसी को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, और उसी के साथ साथ आज मदर्स डे को भी सेलिब्रेट कीजिए अपनी माओ के साथ। तो चलिए सुनते हैं नेक्स्ट गाना।
0: जी बिल्कुल, इसको अमल में लाया जाए। स्वेच्छा की बात को बहुत अच्छी बातें की आपने। एक बहुत ही खूबसूरत से गाने से आपको जोड़ते हैं, बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई, आदित्य और स्वेच्छा के साथ।

0: जी ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है और हम हैं आदित्य आपके साथ। आप लुत्फंदोज हो रहे हैं लव यू जिंदगी में और लव यू जिंदगी में लुत्फंदोज कर रही हैं आपको हमारी एक साथी
1: क्या है
0: स्वेच्छा। जी तो स्वेच्छा और क्या क्या ऐसा कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा विषय है जिस पर आप अगली बात करने वाली हैं, अगली बात बताने वाली हैं, क्या है?
1: आज जैसे मदर्स डे है तो वो एक अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है जिसपे हम कितनी भी बातें कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: मदर्स डे को लेके, माओ को लेके, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेके, जो मतलब हम उनके साथ डेली जीते हैं करते हैं उस चीजों को लेके। और लव यू जिंदगी चल रहा है तो ये अच्छा टॉपिक भी है।
0: अच्छा कैसे माँ को आज के दिन अगर स्पेशल ट्रीट कराना हो तो कैसे किया जा सकता है?
1: स्पेशल फील तो आज के दिन के स्पेशल फील तो हम वैसे भी कोशिश करते हैं करवाते ही रहे, लेकिन हाँ ये बात है कि जब डे हो तो हमें स्पेशली करवाना चाहिए। लोग कहते हैं हर दिन माँ का दिन होता है, वो बात ठीक है,
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात
1: है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई स्पेशली डे हो तो उस पे हमें एक्स्ट्रा सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, क्योंकि बर्थडे वाले दिन ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, साल भर नहीं करते।
0: खैर वो तो एक ही दिन होता है और वो एक दिन से बंधा हुआ भी है, लेकिन ये आपने जो बात बोली है बहुत खूबसूरत बात है कि वैसे तो हर दिन किसी रिश्ते से कोई दिन बंधा नहीं होता है, हर दिन होता है, लेकिन किसी एक खास मौके पर कोई चीज मनाई जा रही है तो उस खुशी को और दोबाला करने में और शिद्दत के साथ उसको सेलिब्रेट करने में क्या गलत बात है ना?
1: बिल्कुल।
0: इसको जितना आप सेलिब्रेट कर सकते हैं करें।
1: हाँ, और क्यों नहीं।

0: और करना भी चाहिए, तो माँ को स्पेशल फील कराना चाहिए। वो हमें सारे सालों के दिन, जितने भी दिन है, सब दिन स्पेशल फील कराती है, हमारे इतना कुछ करती हैं। तो हम वैसे डेली करते रहना चाहिए, लेकिन आज को ज्यादा स्पेशल कर देते हैं तो वो भी खुश हो जाएंगी। वो तो वैसे भी इतनी प्यारी है कि थोड़ी थोड़ी चीजों में खुश हो ही जाती है।
1: अच्छा, हम अपने बारे में बताएं तो हमारी मम्मी स्पेशली फोन करके मतलब हमसे खुद कहती है कि अरे तुमने मदर्स डे विश नहीं किया, मदर्स डे विश करो। खुद फोन करती हैं और बोलती हैं कि मदर्स डे विश करो। हम अपने घर से दूर रहते हैं, हाँ। जिनको पता नहीं है तो वो बता देते हैं। तो ऐसा भी होता है, मतलब मम्मी खुद से बोल देती हैं।
0: कोई अच्छी बात है ना, उसमें क्या फॉर्मेलिटी। और अच्छा है कि है ना, वैसे तो ये गलत बात है कि मम्मी को याद दिलाना पड़ रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी कह रही है तो उनको और अच्छी तरीके से विश कर दीजिए। लेकिन प्लीज सब लोग अपनी मम्मियों को विश कीजिए, हक कीजिए। आज का दिन थोड़ा स्पेशल बनाइए उनके लिए और उनसे बातचीत करिए बैठ के, जो कि सबसे ज्यादा उन्हें कमी लगती है, मुझे ऐसा लगता है बाकी के दिनों में, तो वो कमियां जरूर पूरी कीजिए।
1: बिल्कुल, और हम भी कोई कमी कोई कसर नहीं रखेंगे एंटरटेनमेंट में। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपको सुनवाते हैं, ऐसा क्यों माँ, फ्रॉम द फिल्म
0: नीचे।

0: हेलो, आप सुन रहे हैं, हो गया।
1: अरे ऐसा इतना नहीं बोलना होता। और ऑन एयर आप, खैर ऐसे बोलते हैं कि आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो मुंबई, और हम हैं आदित्य आपके साथ, और हमारे साथ हैं ओ माय गॉड। ठीक है, तो अब क्या बताने वाली हैं, कौन सी बात करने वाली हैं आप?
0: कौन सी बात करने वाले हैं? बात तो वही चल रही है, माँ की चल रही है, और साथ ही साथ लव यू जिंदगी भी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, बातें चल रही है, ये सब चल रहा है। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे मदर्स डे के साथ साथ कि परफेक्शन की

0: कभी कभी वो भी इतनी खुशी दे जाती है और हमें उन्हीं में ढूंढ भी लेनी चाहिए. जैसे कई बार अनप्लान ट्रिप्स होती हैं, कभी कभी दोस्तों से बात कर लेनी चाहिए, उनके साथ हंस लेना चाहिए, फैमिली के साथ बैठ के बातें कर लेनी चाहिए. कब पता नहीं इतनी इन छोटी छोटी चीजें बहुत खूबसूरत पल.
1: कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे सामने से गुजर जाती हैं, जो हमें खुशी दे जाती हैं, लेकिन हम उनको इतना वेटेज नहीं देते, उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियां हमें बहुत बड़ी खुशी दे जाती हैं. और हम यूजली करते क्या हैं अपनी जिंदगी में कि खुशी का एक जरिया तलाशते रहते हैं और सोचते हैं बड़ी खुशी कब आएगी, बहुत सारी चीजों के पीछे भागते भागते अपना वक्त जाया कर देते हैं, जबकि ये जो दौर गुजरता है, पल गुजरता है, उनके दरमियान जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, उनमें जो बड़ी बड़ी खुशियां छुपी होती हैं, हमें उन्हें तलाशना चाहिए. ऐसे ही कहना चाह रही हैं आप?
0: बिल्कुल. और वही चीज है, ये छोटी छोटी खुशियां ही लाइफ को और खूबसूरत बनाती हैं और यादगार बनाती हैं.
1: जी बिल्कुल, और भी चीजें खूबसूरत बनाती हैं, जैसे कि ये खूबसूरत सा गाना सुनते रहिए आप 107.1 FM रेनबो मुंबई.

0: जी लव यू जिंदगी में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ, और हमारे साथ हैं स्वेच्छा। स्वेच्छा
1: जी,
0: आप अकेले चलने को कैसे देखती हैं?
1: अकेले चलने को मुझे लगता है कि सीखने में हमें टाइम लगता है, लेकिन चलना तो अकेले ही है।
0: क्या बात बोली आपने।
1: हाँ।
0: हमें लगता है कि कभी कभी अकेले चलना और अकेले सफर पर निकलना, किसी का साथ न लेना, वो ज्यादा आपके लिए फेवरेबल हो सकता है और लंबे समय तक हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कोई साथ ना हो तो रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर नजर आता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं रहेगा कि आपको वो साथ हमेशा नसीब हो। कभी कभी किसी का साथ ना होना आपको तमाम सारे व्यवधानों से मुक्त कर देता है, क्योंकि उस सफर में जिस सफर के लिए आप निकल रहे हैं, कभी किसी दूसरे को देखकर हो सकता है कि रुक भी जाएं, अगर दूसरे को लगे कि इस मंजिल में एक पड़ाव पर एक ठहराव लेना चाहिए, तो हो सकता है कि उसके साथ आप भी ठहर जाएं, लेकिन जब आप अकेले होंगे तो आप मंजिल पर जाके ही रुकेंगे, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। और साथ ही साथ ये है कि अकेले चलने की भी, अकेले चलने में एक आजादी भी है कि ठीक है, आपने सच बोला कि स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफें आती हैं, पर एट द एंड करना तो वही है, वही घूम फिर के बात आ जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो अकेले चलना बहुत सही है आपके लिए, आप जो काम करना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं, उस सब में यदि आपको सिर्फ आपका काम, आप खुद और आपको अपने आप को डिस्कवर करना है, तो अकेले चलने से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ स्वेच्छा तो हैं ही, और बहुत सारे लोग हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जुड़े हुए हैं और कुछ फ़ोन कॉल्स भी अभी इस दरमियान हमारे पास आए। आप ये मोहब्बत यूं ही बनाए रखिए, सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई, और हम आपको सुनाते हैं एक बेहद खूबसूरत सा गाना।

अपनी ही एक कहानी मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

जी 5:59 का वक्त और आप 6 भी बज चुके हैं और एक खूबसूरत सा गाना और सुनेंगे आप, उसके बाद आप समाचार का अंतराल होगा और फिलहाल के लिए लव यू जिंदगी से विदा लेते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं अंदाज़े में हमें।

इश्क मोहब्बत प्यार एक ऐसे मकाम है, कैसे पड़ाव है जहां पर लाख हाथ हार लगे, हार हाथ लगे, लेकिन फिर भी लोग इससे गुजरते हैं और इस कैफियत को खुद पर तारी होने भी देते हैं। शारिक कैफी साहब फरमाते हैं कि आईने का साथ प्यारा था कभी, आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी। इश्क के किस्से न छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में आ रहा था फिर कभी। ख्वातीन हज़रात, 6:16 का वक्त और आप लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो चुके हैं अंदाज़े बयां में अपने दिल की आवाज़ आदत के साथ। एक बेहद खूबसूरत सी गज़ल, खूबसूरत सी आवाज़।

वसीम बरेलवी साहब फरमाते हैं कि दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। मैं भी उसे खोने का हुनर सीख ना पाया, उसको भी मुझे छोड़ के जाना नहीं आता। ढूंढे हैं तो पलकों पर चमकने के बहाने, आंसू को मेरी आंख में आना नहीं आता। इस खूबसूरत अशार के साथ सुनिए एक बेहद खूबसूरत सी गज़ल।

एक दिन खुद को पास बिठाया हमने, एक दिन खुद को पास बिठाया हमने, पहले यार बनाया फिर समझाया हमने, खुद भी आखिरकार उन्हीं वादों से पहले, खुद भी आखिरकार उन्हीं वादों से पहले जिनसे सारी दुनिया को बहलाया हमने। शारिक कैफी साहब, एक और बेहद खूबसूरत सी गजल आपके सुपुर्द है।

6:53 का वक्त और ये वक्त फिलहाल के लिए अंदाजे में यहाँ से विदा लेने का, फिर बहुत जल्द ही हमारे और आपके वक्त में हम आपसे फिर से मिलेंगे प्रोग्राम हम तुम में। और उस दरमियान आप समाचार का अंतराल और एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल सुनेंगे, लेकिन हम तुम में आपकी फरमाइशों का हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें अपने गाने भेज सकते हैं 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फिर से सुन लीजिए 8657661071। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 4515413233 और 33 पर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फिलहाल तो हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत से अशार से जोड़ते हैं जी, इल्मा हाशमी के दो शेर सुनिए, क्या फरमाती हैं कि राज क्या क्या है मेरे दिल में सुनाऊं कैसे, राज क्या क्या है मेरे दिल में सुनाऊं कैसे, जख्म किस किस ने दिए ये बताऊं कैसे। तेरी यादें मुझे बेचैन तो करती हैं मगर, तेरी यादें मुझे बेचैन तो करती हैं मगर, अपने दिल को मैं कहीं और लगाऊं कैसे।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। समय हो रहा है ठीक 7:11 और ये समय होता है प्रोग्राम हम तुम का, जिसमें हम बातें तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ आपके फरमाइशी गाने जो आप लोग बताते हैं वो गाने सुनते हैं, साथ ही साथ उस म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम इस गाने के साथ।

हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। तो कैसा चल रहा है म्यूजिक का सफर? बहुत खूबसूरत गाने चल रहे हैं जो कि चलते रहेंगे। आप सभी के मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ और आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने बोले हैं जो कि पूरे आप लोगों की फरमाइश पूरी करने की कोशिश की जाएगी। जितने गाने हम बजा सकते हैं उतने बजाएंगे। अभी जो गाने चल रहे थे वो अजय साखरे जी ने और दिग्दर्शन जी ने बोले थे। अब जो नेक्स्ट गाना है DDLJ का, फिरोज सिगनपुरिया जी ने बोला है, और उसके बाद बैक टू बैक हम सुनेंगे हम साथ साथ एक गाना जो अरविंद कुलकर्णी जी ने रिक्वेस्ट किया है। तो सुनते हैं अगला गाना।

0: आजकल दिशा स्कीम च्या टेली लॉ न्याय बंधू आणि कायदा साक्षरता तसेच जागरूकता आणि कायदी विषयक मदतीसाठी टेली लॉ च्या 1-4-4-5-4 या टोल फ्री नंबर वर तसेच www.tele-law.in या वेबसाइट वर माहिती मिळवू शकता।
1: हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

0: हाँ जी, तो कैसा चल रहा है म्यूजिक का सफर? आपने ट्यून इन किया है 107.1 FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है
1: हम तुम।
0: मैं हूँ आरजे स्वेच्छा और आप सभी के मैसेजेस पढ़ रही हूँ और साथ ही साथ कोशिश कर रही हूँ कि आपके पसंदीदा गाने सुना सकूँ। साथ में काफ़ी सारे लोग पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो उसके लिए थैंक यू। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए और म्यूज़िक सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो पे। प्रोग्राम चल रहा है हम तुम।

जी 7:55 का वक्त और अब आवाज बदल गई है, स्वेच्छा बैक सीट पर चली गई और उन्होंने कहा कि आप सबका धन्यवाद कर दीजिए। तो हम आ गए हैं, हम यानी आदित्य आपके साथ और बहुत ही खूबसूरत से गानों के साथ, बहुत ही खूबसूरत से मैसेजेस के साथ आपने इस प्रोग्राम को सजाया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत सारे मैसेजेस ऐसे रहे जो पढ़े नहीं जा सके, बहुत सारे गाने ऐसे रहे जो प्ले नहीं हो सके, लेकिन बहुत सारे गानों की एक लंबी सी फहरिस्त थी जिसको स्वेच्छा ने अपनी इच्छा से सुनाया आपको और अजय साखरे साहब के गाने की फरमाइश पूरी हुई और दिग्दर्शन कविता जी के गाने को भी आपने सुना, फिरोज सिगनपुरिया साहब के गाने को भी सुना, अतुल अरविंद कुलकर्णी साहब के गाने और राकेश माथुर साहब, प्रवीण जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया फरमाइश भेजने के लिए और इतने खूबसूरत गानों की फरमाइश भेजने के लिए। और बहुत सारे गानों का ये है कि उनका नाम बाद में लिया गया तो कुछ लोग शायद इससे खफा होंगे कि अरे मेरा नाम नहीं आया, लेकिन देखिए हमने जिनका गाना प्ले हुआ उनका सबका नाम हमने ज़रूर ले लिया है और जिनकी फरमाइशें अभी प्ले नहीं हो सके उनकी फरमाइशें अगले शो में ज़रूर प्ले होंगी। आप कल 5 से 8 हमारे साथ फिर से रहने वाले हैं तो कल उन फरमाइशों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल तो आप ये मोहब्बत भरा साथ यूं ही बनाए रखिए और एक और खूबसूरत सा गाना और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा, फिर मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, शुक्रिया।

0: आभारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. Stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एक्सपैंड्स कैबिनेट।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरा अक्स है सरे आईना पसे आईना कोई और है। खूबसूरत सी गज़ल से आगाज़ हो चुका है रंगे महफिल प्रोग्राम का। वादा वफा करने के लिए एक बार फिर हिना मौज हाजिर खिदमत है, मेरा आदाब कबूल कीजिए। 11:10:53 खूबसूरत सी गज़ल आप सुन रहे हैं और ये गज़ल बहुत कुछ कह गई हमसे आपसे। इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मोहब्बत में मुलव्वस हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि मोहब्बत एक खुशबू है, मोहब्बत एक खुशबू है जो हमेशा साथ चलती है। इसका साथ हो तो कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। मोहब्बत का एहसास दोस्तों हर किसी के अंदर मौजूद होता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे दिल के किसी कोने में इसकी आहट को बखूबी महसूस कर सकते हैं हम। और जब यही एहसास शायरी में उतरता है तो गज़ल बन जाया करता है, क्योंकि ख़ास तौर पर गज़ल की रूह अगर कहा जाए तो वो है मोहब्बत। अगर मोहब्बत के जज्बे को गज़ल से अलग कर दिया जाए दोस्तों, तो शायद उसकी अल्फाज जो हमें महसूस कराते हैं वो हम महसूस नहीं कर पाएंगे। अल्फाज हो तो जाएंगे मगर उनकी

धड़कन ऐसा लगता है कि कहीं खो सी जाएगी अगर उसमें मोहब्बत मौजूद ना हो। एक वो चेहरा जिसको देखकर इंसान अपने दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है और उसके साथ साथ ताउम्र चलने की ख्वाहिश भी उसके अंदर जन्म लेती है। ऐसी ही खूबसूरत एहसास और जज्बात से लबरेज़ ये रिश्ता जिसको हम मोहब्बत कहा करते हैं, इसको सेलिब्रेट करेंगे आज प्रोग्राम रंगी महफिल में। बने रहिए मेरे यानी हिना मौज के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर।

दोस्तों, ये सच बात है कि गज़ल का जादू जो है वो सर चढ़कर बोलता है। और गज़ल में मोहब्बत के मानी सिर्फ किसी इंसान से प्यार नहीं होता दोस्तों, बल्कि उसमें इंतज़ार भी होता है, तड़प भी होती है, वफा भी होती है और खामोशी में छुपा हुआ दर्द भी होता है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

रंगे महफिल प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर 11:28:20। हिना मौज है आपके साथ इस खूबसूरत से गजलों भरे सफर में। दोस्तों, गजल की दुनिया में मोहब्बत की अगर बात की जाए तो मोहब्बत कई रंगों में दिखाई देती है। कहीं वो पहली मुलाकात की मासूमियत है तो कहीं बिछड़ने के बाद की तन्हाई। मीर की शायरी हो या फिर गालिब के अशार, हर जगह मोहब्बत अपने अलग अंदाज में मिलती है। मीर तकी मीर के यहाँ मोहब्बत दर्द बनकर उभरती है तो मिर्ज़ा गालिब के यहाँ मोहब्बत एक गहरी सोच और फलसफा बन जाती है। शायद यही वजह है दोस्तों कि गज़ल अब भी उर्दू शायरी की लिस्ट में सर फहरिस्त है और आज भी सबके दिलों पर राज करती है, क्योंकि इसके अंदर इंसानी एहसास व जज्बात के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी में होने वाली हर वो चीज़ मुलव्वस हो सकती है जिसके बारे में इंसान सोचता है या फिर जिससे इंसान की ज़िंदगी होकर गुजरती है।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

11:38 और 40 सेकेंड। खूबसूरत से प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है रंगे महफिल। इसमें खूबसूरत सी गज़लें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप सब के एहसास जज्बात जो आपकी मोहब्बत से जुड़े हुए हैं वो सब कुछ उभर कर इन खूबसूरत गज़लों में ज़रूर आप तक पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गज़लें पसंद आ रही होंगी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिना मौज के साथ। दोस्तों गजल हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं है बल्कि महसूस करने का नाम है। कभी किसी की याद में मुस्कुरा देना, कभी किसी के लिए चुपचाप दुआ कर लेना, यही मोहब्बत का असली मकाम है। गजल की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसे हर सुनने वाला इसमें अपनी कहानी कहीं ना कहीं ढूंढ ही लिया करता है। इसके लफ्ज़ हर इंसान की ज़िंदगी को छू कर गुजरते हैं, और किसी अपने से बिछड़ जाने की याद हो या फिर किसी को या फिर किसी से की हुई अधूरी सी मुलाकात हो, शायरी और ख़ास तौर पर शायरी की सिंफ गज़ल इसको इस तरीके से बयान करती है कि वो हमें अपनी सी मालूम होती है और लगता है कि हाँ, ये इंसिडेंट, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी हुई थी और हम भी ऐसी ही कैफियात से दो चार हो चुके हैं।

11:54 नेहना मौज के आप सबको खुदा हाफिज कहने का वक्त आ चला। चलते चलते बस यही कहूंगी कि गूंजूंगी तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको भुला सके न तू वो गुफ्तगू में। दोस्तों, मोहब्बत गजल की जान है और उसकी आवाज है, उसकी पहचान है, और यही एहसास गजल को अजीम बनाता है। इसी एहसास को समेटे हुए आज इस प्रोग्राम में आप सब से बस इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी लफ्ज़ों भरे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे यानी हिना मौज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शुभ खैर। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के

75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व और निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य का बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 12:05 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं एसएम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। एग्जाम

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अफसाना ज्यादा है और वक्त कम, ऐसे मौके के लिए साहिर साहब का यह शेर कितना मुनासिब है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक

दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों में के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य को बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 1:05 और 37 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुहानी रात।

सगरे गाँव की गोरिया कुछ कुछ मैं छोड़ रहा।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी ची नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसे ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 2:05 और 33 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

जा

नंबर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण की केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुचि पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। गुजरात और राजस्थान में आज लू चलने के अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की भी आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तहे दिल से स्वागत है हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम का, जो है मिडनाइट मेलोडीज। तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण की केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते के प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नवीनतम शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं पसंद नहीं आई हैं। इससे पहले ईरान ने कहा कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान के माध्यम से भेजी गई, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्के ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने नहीं समझा जाना चाहिए। रूस के राजदूत सरगेई नेचायेव ने कहा है कि रूस नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच को लेकर चल रही चर्चाएं महाद्वीप के रणनीतिक संतुलन को बदल सकती है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास स्थित एक क्रूज जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को निकासी के लिए जहाज से उतारना शुरू कर दिया गया। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत आइसोलेशन में रखा जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम यानी सारे गामा का, तो जुड़े रहिए प्रोग्राम के साथ और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम सुजला